0: And the next news that we have is from the world of business. जी हाँ, सिंगापुर में और सारी दुनिया में इस समय ऐसा लग रहा है धीरे धीरे businesses are starting to feel the strain of rising costs because of the war in the Middle East. और सिंगापुर की अगर बात करें तो खैर सबसे पहले आपको बता तो दे कि ये है मॉर्निंग शो. सुबह का असली वेक अप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. रेडियो मस्ती 24/7 पर जी हाँ बात कर रही हूँ मैं बिजनेस न्यूज की. और बहुत से बिजनेसेस यहाँ पर दे आर बिगिनिंग टू फील द स्ट्रेन ऑफ राइजिंग कॉस्ट. जैसे कि मैंने कहा, कंपनीज लाइक जेंटिंग सिंगापुर, जंबो ग्रुप, किमली, शेंगशियोंग एंड कंफर्ट डेलग्रो, ये सभी वॉर्न कर रहे हैं माउंटिंग प्रेशर्स के अंडर टफर ऑपरेटिंग एनवायरमेंट अहेड. बहुत से सिंगापुर एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड बिजनेस अपडेट्स फॉर जैन टू मार्च क्वार्टर, एंड दे हैव डिस्क्लोज कंसर्न्स ओवर हाउ राइजिंग एनर्जी, फ्रेट एंड सप्लाई चेन कॉस्ट आर राइजिंग फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हैव ट्रिकल्ड इनटू द इकोनॉमी. और इसके बदले में डिमांड चैलेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में. ऑब्वियसली द वॉर जो कि फेब 28 को शुरू हुआ था, US एंड इसराइल लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन ईरान, इट इज नाउ इन इट्स 11th वीक. और उसका जो इम्पैक्ट है वो महसूस होने लगा है बियॉन्ड द इनिशियल जंप इन पेट्रोल, कुकिंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस एज वेल एज एयर फेयर्स एंड टैक्सी फेयर्स. राइजिंग कॉस्ट जो है फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड वॉर आर बीइंग फेल्ट मोर वाइडली अक्रॉस द इकोनॉमी. और इस समय ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट होने लगा है. एंड वन एग्जाम्पल इज सॉफ्टर ट्रैवल एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स एज इन्फ्लेशन राइजेस बोथ डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली. अब देखने की बात है तो रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोसा की तरह अगर हम देखें तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ सोर्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स बिजनेसेस, हायर एनर्जी, फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस, ये सारे ही रिपोर्ट करे हैं. और इस समय जेंटिंग सिंगापुर ने पोस्ट किया 55% फॉल इन नेट प्रॉफिट एंड द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड मार्च 31st. वेल, ऐसा ही इम्पैक्ट दिखेगा इस समय क्योंकि अब कंपनीज डिक्लेयर करने लग गई हैं अपने रिजल्ट्स. कैसा कांटा लगा है इस मिडल ईस्ट वॉर की वजह से निकलने लगेगा इस टाइम पर हमारे रिजल्ट्स के जरिए. ऑन रेडियो मस्ती 24/7 टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक गाइस, एंड ऑफ कोर्स कमिंग बैक विद सम मोर बॉलीवुड न्यूज़ दिस टाइम. स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: right, time for us to give you an update of Bollywood. और Bollywood में इस हफ्ते एक फिल्म रिलीज हुई थी. आपका अगर मूड कर रहा है कि भाई बड़े दिनों से फिल्म नहीं देखी है, कहीं तो चलें, तो फिर ये फिल्म आपने देखी या नहीं? इट्स कॉल्ड पति पत्नी और वो दो. गुड मॉर्निंग. सुबह का असली वेकअप कॉल, द मॉर्निंग शो विद रेडियो मस्ती 24/7. काफी अटेंशन मिल रही है, जी हाँ, इस फिल्म को. इसमें देखे गए हैं आयुष्मान खुराना, ऑफ कोर्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनके साथ हैं सारा अली खान, राकुल प्रीत सिंह एंड वामिका गाबी. और आयुष्मान जो है, लगता है कि वो लीड रोल में है. रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है विद अ स्लाइटली ड्रामेटिक टच. और तब से रिलीज हुई है ये वाली फिल्म विच इज पति पत्नी और वो दो, तब से लोग जो है काफी ऐसे बढ़ाई कर रहे हैं, जी हाँ, आयुष्मान खुराना की और स्टोरी की एंड द फन स्पिरिटेड वाइब. एंड ऑफकोर्स कह रहे हैं दैट इट इज जेन्युइनली एंटरटेनिंग. बहुत से लोग तो इंटरेस्टिंगली सारा अली खान की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसने तो कमाल ही कर दिया है, ब्रिलियंस इन मेकिंग इस आयुष्मान इज ऑब्वियसली लुकिंग पेल इन कंपैरिजन इवन टू सारा अली खान. और इनकी जो फ्रेश केमिस्ट्री है और फनी सिचुएशन से लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया हिट है ऑडियंसिस के साथ में. वेल, इस फिल्म की ओपनिंग हुई 4 करोड़ ऑन डे वन, एंड देन उसके बाद अगले दिन 5.5 करोड़ तक बढ़ गई. और उसके बाद आप देखें तो हर दिन 1 से 1.5 करोड़ बढ़ती चली जा रही है. वील रियली कीप अ क्लोज वॉच ऑन चल क्या रहा है, क्योंकि वीकेंड के बाद के नंबर्स फिलहाल नहीं आए हैं. मुझे लग रहा है कि हमें बढ़ना चाहिए अगले गाने के ब्रेक की तरफ एंड ऑफकोर्स अगले खबर की तरफ. तब तक आप बताइए आपका देखने का मूड है या नहीं है पति पत्नी और वो दो.
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर.

0: बिल्कुल धड़कने देंगे आपके दिल को, इनफैक्ट आपके दिल की धड़कन बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन।
1: सीरियस हेडलाइंस With a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7.
0: Radio Masti 24/7. It's Renuka with you. Ji haan, on the morning show. So 7 baje se we've been together. And बिल्कुल 10 बजे तक आपके साथ रहूंगी। वेल, फिलहाल के लिए आपको एक अच्छी खबर देती हूँ कि 18,000 से भी ज्यादा HDB फ्लैट्स को चुना गया है फॉर अपग्रेडिंग वर्क्स अंडर द होम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सेकंड मिनिस्टर फॉर नेशनल डेवलपमेंट इंद्रानी राजा ने बताया इसी वीकेंड पर। ये जो फ्लैट्स हैं, दे आर लोकेटेड अक्रॉस सिंगापुर। जी हाँ, एंड ओवर $253 million विल बी एलोकेटेड फॉर दीज वर्क्स। HIP हेल्प करता है फ्लैट ओनर्स को टू एड्रेस कॉमन मेंटेनेंस इश्यूज सच एज स्पॉलिंग कॉन्क्रीट एंड सीलिंग लीक्स ड्यू टू वेयर एंड टियर। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स इम्प्रूवमेंट्स टू एनहांस द लिविंग कंडीशंस ऑफ ओल्डर फ्लैट्स। एक नेबरहुड रिन्यूअल प्रोग्राम के पब्लिक कंसल्टेशन इवेंट पर बात करते हुए इंद्रानी राजा ने ये कहा दैट प्लीज एनकरेज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू साइन अप फॉर द प्रोग्राम, स्पेशली अगर सीनियर्स हैं आपके घरों में, सो दैट दे टू कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज हेवीली सब्सिडाइज्ड इम्प्रूवमेंट्स। ऐसे दो कॉम्पोनेंट्स हैं काम के अंडर HIP, एसेंशियल इम्प्रूवमेंट्स एंड ऑप्शनल अपग्रेड्स। Essential improvements ensure करता है basic safety needs of residents staying in older flats, जो की हैं fully funded by the government for Singaporean households. और जो optional improvements हैं, वो heavily subsidized होते हैं by the government, with Singaporean households paying as low as 5% of the cost depending on the flat type. तो बिल्कुल अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप बिल्कुल HIP प्रोग्राम के बारे में पता लगा सकते हैं और शायद आपको भी फायदा हो जाए उससे। What say you?
2: Sanam re, sanam re, tu mera sanam.
0: All right, up next coming, I'll take a short break. Jaldi aati hu.
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा।
3: हाँ जी जी।
2: आधा केजी मसूर दाल।
3: जी जी।
2: काजू किशमिश। ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं।
3: जी जी।
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
2: क्या जी?
3: जी जी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेक आउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

27th मई की छुट्टी है. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. ये वाली बात सुन के आई एम श्योर आप सभी के कान खड़े हो गए होंगे. दिस इज रेणुका विद यू ऑन द मॉर्निंग शो. सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग शो. कहने की बात यह है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर 27 मई की छुट्टी है भी हम तो काम पर ही रहेंगे. Well, Muslims in Singapore will celebrate Hari Raya Haji. जी हाँ, May 27th को आज ही के दिन में country's top Islamic leader ने अनाउंस किया है. Well, Dr. Naziruddin Muhammad Nasir, the Mufti of Singapore, उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट में कहा कि the month of Zulhijah, which is the 12th month of the Islamic calendar, वो शुरुआत होगी on May 18th. एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन ये दिखाते हैं कि जो क्रेसेंट मून है इस महीने का, इट्स स्टेड अबव द सिंगापुर होराइजन आफ्टर सनसेट ऑन मे 17. दैट मीन्स मे 17th वॉज द फाइनल डे ऑफ द करंट मंथ. जी हाँ, और आज से शुरुआत हुई है 12वें महीने की ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. अब भाई इसके आगे मैं इतना टेक्निकलिटीज में तो नहीं जा सकती, बस इतना समझ में आ रहा है कि हरी राय हाजी जो है, ऑल्सो नोन एज ईद अल अधा और द ग्रेट डे ऑफ सैक्रिफाइस, वो सेलिब्रेट होगा 10वें दिन ऑफ दिस मंथ एंड मार्क्स द एंड ऑफ द हज पिलग्रिमेज टू मेका इन सऊदी अरेबिया. इसीलिए हरी राय हाजी जो है वो मई 27th को सेलिब्रेट किया जाएगा. तो इसी के साथ में मुफ्ती ने ये भी कहा दैट लेट अस फिल दीज सेक्रेड एंड ब्लेस्ड डेज ऑफ द मंथ बाय इंक्रीजिंग आवर एक्ट्स ऑफ वर्शिप एंड गुड डीड्स. और साथ ही में सभी पिलग्रिम्स को सेफ और ब्लेस्ड हज भी विश करा. 900 मुस्लिम पिलग्रिम्स गए हैं सिंगापुर से इस साल फॉर द एनुअल हज, ये भी पता लगा है. और ये हुआ शुरुआत ऑन मई 14th. वेल ऑन रेडियो मस्ती गाइस, विल टेक अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक हियर. आई विल नेक्स्ट आवर. फिलहाल के लिए ये दो गाने बैक टू बैक वेटिंग फॉर यू. गुड मॉर्निंग.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above, selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

And that was DJ Akhil. Ji haan, what an amazing mix, right? Good morning, everybody. This is Renuka with you on The Morning Show. Monday Coffee ka best partner. The Morning Show on Radio Masti 24/7. News, views and a pinch. Masti. अब आप और मैं तो मिले नहीं पिछले हफ्ते, लेकिन आपको बता दें कि US President Donald Trump और Xi Jinping China में, जी हाँ, पिछले हफ्ते they were touting economic wins that gave markets little to cheer. Beijing ने warn किया Washington को about mishandling Taiwan and said its war with Iran should never have started. Good morning on The Morning Show, giving you an update of the meeting between Mr. Trump and, of course, the China Premier Xi Jinping. Mr. Trump, unka pehla visit tha of any president to China, America's main strategic and economic rival since his last in 2017. Aur uske baad, of course, baatein chal rahi thi ki critical, crucial midterm elections aane wale hain, ratings kya hongi, bahut kuch ho raha hai is time par Mr. Trump ki zindagi mein. Well, लेकिन वहां से निकलते उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ फैंटास्टिक ट्रेड डील्स करी हैं चाइना के लिए, चाइना के साथ, एंड इट इज ग्रेट फॉर बोथ कंट्रीज. वेल, वी विल ऑफ कोर्स गेट मोर डिटेल्स एज वी मूव अलोंग. लेकिन पहले चैटिंग चल रही थी, स्ट्रोलिंग चल रही थी, जी हाँ, साथ साथ घूम रहे थे. मिस्टर ट्रंप रिमार्क कर रहे थे अबाउट द ब्यूटिफुल रोजेज, और मिस्टर शी जो है वो बता रहे थे कि भाई, आई प्रोमिस कि मैं आपको सीड्स भेजूंगा फॉर दीज फ्लावर्स बिफोर अ लंच ऑफ लॉबस्टर बॉल्स, कंग पाओ स्कैलप्स एंड श्रिम्प डम्प. Well, ये सारी बातें बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़ी सारी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी गई विद द ईरान वॉर, एंड शी जिनपिंग ऑल्सो सेड दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट शुड हैव नेवर हैपेंड एंड इट हैज नो रीजन टू कंटिन्यू. वेल, साथ ही साथ में मिस्टर ट्रंप ने कहा कि लीडर्स हैड डिस्कस्ड ईरान एंड फेल्ट वेरी सिमिलर, दो मिस्टर शी डिड नॉट से दैट. वेल, ये डिप्लोमेटिक बातें धीरे धीरे निकलती हैं, पता लगता है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो तो आपको हम अपडेट करेंगे ही. फिलहाल के लिए थोड़ा सा टेम्पो बढ़ाते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7. कमिंग अप भूतनाथ रिटर्न्स के साउंड ट्रैक से वाला गाना, स्टे ट्यून्ड.

0: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

और जहां हम इतनी सीरियस सीरियस वाली बातें कर रहे हैं सारी दुनिया की, तो चलिए एक खबर आपको दिए देते हैं कि माधुरी दीक्षित नीने की लाइफ में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज रेणुका विद यू ऑन द मॉर्निंग शो। मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7 न्यूज व्यूज एंड अ पिंच। माधुरी दीक्षित नीने, जी हाँ, हाल ही में 15 मई को उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 59th बर्थडे। एंड द मेकर्स ऑफ माँ बहन, विच इज अ केओटिक क्राइम कॉमेडी, उन्होंने अनाउंस किया उनकी अपकमिंग फिल्म विल प्रीमियर ऑन द स्ट्रीमिंग जायंट नेटफ्लिक्स, जी हाँ, June 4th को। माधुरी के साथ में इस फिल्म में देखेंगे तृप्ति दिमरी, धरना दुर्गा एंड रवि किशन इन पिवोटल रोल्स। इनके साथ में है गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह एंड शार्दुल भारद्वाज। June 4th को, जी हाँ, ये फिल्म प्रीमियर होगी। एंड दिस इज ऑफ कोर्स रेखा, अ मदर हुज ऑलरेडी जगलिंग इनफ। मैं रेखा अभिनेत्री की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेखा नाम है हमारी माधुरी दीक्षित का इस फिल्म में। एंड शी इज अ मदर जो बहुत जगल कर रही हैं इनफ अंटिल लाइफ थ्रोज उनका अल्टीमेट कर्व बॉल, अ डेड बॉडी इन हर किचन। और इनकी दो बेटियां जो हैं, जया विच हुज द रिस्पॉन्सिबल वन और सुषमा जो वाइल्ड कार्ड है, तो तीनों के तीनों मिलके किस तरह से झूठ बोल सकते हैं, कितनी जल्दी झूठ बोल सकती हैं, अपने नोजी नेबर्स से किस तरह से बचा सकती हैं उस डेड बॉडी को और बच के निकल सकती हैं उस सिचुएशन से। वेल, दैट्स व्हाट द मूवी इज ऑल अबाउट। ऑफ कोर्स फाउंडर एंड सीईओ अबंडांटिया एंटरटेनमेंट एंड प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि माँ बहन एक ऐसी कहानी है दैट हुक्स यू विद इट्स ऑडेशियस प्रेमिस एंड स्टेज विद यू फॉर इट्स इमोशनल ट्रूथ। वेल, बिटवीन यू एंड आई गाइज, मैंने नहीं देखा कि पिछले कुछ टाइम से माधुरी दीक्षित ने कोई कमाल की ऐसी कोई फिल्म हमको really di ho, so I just hope that this one is actually keeps up to its promise, right? On Radio Masti, we'll take a short break here. Vaapas aati hu with some more news before I say my goodbyes this morning. Ji haan, after all, baaki log bhi to yahan aane ke liye betaab hain. Good morning. Josh mein raho, ala re ala Simba ala.

और ये खबर तो मुझे दो बार पढ़नी पड़ी. मैंने कहा क्या देख रही है मेरी आंखें. वेल लेट मी टेल यू गाइस, नॉर्थ कोरिया की वुमेन्स फुटबॉल टीम लैंड हुई साउथ कोरिया में कल ही के दिन में. है ना खबर. मंडे कॉफी का बेस्ट पार्टनर द मॉर्निंग शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7. न्यूज Views and a pinch. Masti. Good morning once again. जी हाँ, स्पोर्ट्स की खबर में मुझे लगा कि यार यही वाली खबर सुर्खियों पर होनी चाहिए. So North Korean women's football team actually landed in South Korea कल के दिन में, marking the first visit by a sports team from the isolated country. जी हाँ, North Korea की बात कर रही हूँ, अपने southern neighbor के पास में 8 सालों के बाद. And this is to play in the Asian Champions League semi-finals. Well, ये जो football की team है उसका नाम है My Hometown Korean में. And it emerged from South Korea's Incheon International Airport near Seoul, surrounded by throngs of reporters and supporters जो कि को वेलकम कर रहे थे. 39 नॉर्थ कोरियन प्लेयर्स और स्टाफ एकदम आइडेंटिकल डार्क जैकेट. सीरियसली अगर आप फोटोज देखेंगे ऐसा लगेगा कि किसी फिल्म से जैसे रोबोट्स चलते चले आ रहे हैं. स्कर्ट्स, पिंक सूटकेसेस, मतलब उनके सबके सूटकेसेस भी बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम. एंड दे वर ग्रीटेड बाय डजंस ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ कोरिया सिविक ग्रुप्स होल्डिंग वेलकम साइंस. उन्होंने लिखा वी वेलकम यू, ऐसा बोल भी रहे थे लोग. हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी एंड द प्लेयर्स जल्दी से प्लेन से उतरते ही बस में गए and departed the airport under police escort. और साथ ही साथ में जो ये जो मेंबर्स हैं उनमें से एक ने ये कहा कि हम यहाँ आए हैं टू वेलकम दिस टीम हु आर विजिटिंग साउथ कोरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 years. ये कहा सिविक ग्रुप के मेंबर्स ने, नॉट द नॉर्थ कोरियन टीम ने ऑफकोर्स. बट साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई काश ये जो हमारा स्पोर्ट है इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशनशिप में भी सुधार होगा. होगा होगा, जस्ट स्टे पॉजिटिव. होगा सुनते हैं साथ साथ रेडियो मस्ती 24/7 पर ये वाला अमेजिंग सा गाना कमिंग फ्रॉम स्ट्रीट डांसर 3D. स्टे ट्यून्ड.

तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इतना बताना चाहूंगी आपको कि जीजी मार्ट ऑनलाइन से फिलहाल के लिए मैं 10 डब्बे आम के मंगवा चुकी हूँ। 10 डब्बे एंड एवरी बॉक्स हैज 12 मैंगोज। सो यू कैन इमेजिन, मुझे तो अपने पे शक होने लगा कि क्या मैं सीरियसली बिजनेस तो नहीं करना शुरू कर दिया मैंने। सुबह का असली वेक अप कॉल द मॉर्निंग। बट एक्चुअली व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब मैंने पहली बार वो आम मंगवाए और मैंने अपने कुछ गेस्ट को सर्व किए और कुछ फ्रेंड्स को खिलाए, तो उन्होंने सबने अपने अपने डब्बे मेरे थ्रू ही ऑर्डर करने शुरू कर दिए। So, well, I must tell you guys, the Indian mango season is almost coming to an end कुछ ही दिनों में। So, अगर आपने अभी तक taste नहीं करे हैं, these mangoes are not to be really missed। ज़रूर इसको order कीजिए और ggmartonline.com पर जाइए। And of course, Alfonso है, रत्नागिरी है, देवगढ़ है, वो जाके बिल्कुल order कीजिए। और साथ ही साथ में मैं आपको बता सकती हूँ और क्या क्या किया हमने इस weekend पर। खैर, I had a lovely conversation with the weekend वाली चर्चा जो है विनोद दुबे जी के साथ में। अगर आप वो देखना चाहें तो बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम पर वो पूरा का पूरा इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन है, काफी इंटरेस्टिंग है, जाके जरूर देखेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी छोड़िए, हमारी सपना जी जो बहुत एक क्लोज लिसनर है, उन्होंने भी इस वीकेंड पर चैनल न्यूज एशिया में जाके अपना इंटरव्यू दिया है होम बिजनेसेस की तरफ से। व्हाट अ ब्यूटीफुल अमेजिंग इंटरव्यू। अगर वो भी आप हाथ में ला सके तो उसको भी जरूर सुनिएगा। फिलहाल के लिए हमारे बाकी के जॉक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सो पूरा पूरा दिन बिल्कुल बिजी है आपका हमारे साथ, और भी बंधे रहिए हमारे साथ। मस्ती एवीआई पर नए नए शोज आते रहेंगे और ऑफ कोर्स हमारा एक बड़ा ही अमेजिंग सा सरप्राइजिंग सा एक एक्सपीरियंस आपके लिए आना वाला है बहुत ही जल्द। वी गोइंग टू अनाउंस दैट जस्ट इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ। गेट रेडी फॉर दैट, इट्स गोइंग टू बी टोटली एक्साइटिंग। मोर व्हेन वी स्पीक नेक्स्ट। बट फिलहाल के लिए टाइम फॉर मी टू से गुड बाय एंड हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द डे एंड द वीक अहेड। Bye guys, this is Renuka signing off from the Morning Show, Radio Masti 24/7.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: हेलो
1: hey Nail, are you free? कुछ important तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा important क्या हो सकता है? बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से notes पकड़ने हैं।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: Every voice begins with a dream, a note that dares to fly. From Singapore to the world, Music Beyond Boundaries Season 4. Watch Music Beyond Boundaries only on Musti AVI, powered by Musti Media Network Singapore. For show timing and more, stay tuned to Radio Musti 24/7 Live. One world, one sound, one love. Music beyond boundaries, beyond borders, beyond time.
3: Stop the music, people, sing it.
4: नाचने का मन है,
5: मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
6: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
7: चेक इट.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
1: What
0: makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
0: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: अर्जुन आएंगे
4: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: एक सेकंड के लिए रुक जाओ, बस एक सेकंड के लिए। बस अगर आपको डेली रूटीन के लूप से ब्रेक आप ढूंढ रहे हो ना, तो सही सिग्नल मिल चुका है। यस यस, वेलकम वेलकम टू मस्ती हैंग आउट। मैं हूँ आपके अपनी मुग्धा और अगले तीन घंटे के लिए हम रूटीन को पॉज कर रहे हैं। हेलो, वेलकम, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके अपनी मुग्धा। एंड दिस इज अ न्यू डे, अ न्यू शो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स मंडे। आजकल मैं पिकी ब्लाइंडर्स देख रही हूँ, तो मेरा मंडे हो गया है मंडे से। वेल, सब कुछ बदल सकता है, पर एक चीज नहीं बदल सकती, वो है फन। आज क्या है? 18th of May. हाय, ये जो मंडे है ना, उसका नाम सुनते ही सबको स्ट्रेस होने लगता है, राइट? पर कैलेंडर पे आज का दिन जो है बड़ा मजेदार है। आज मालूम है क्या है? आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। वैसे तो म्यूजियम्स बोरिंग लगते हैं लोगों को, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग तो एक म्यूजियम ही है ना? पुराने किस्से, बचपन के अजीब ख्वाब, सारी यादें, सपने वर्सेस एवरीवन सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना? सब यहीं तो सेव किया हुआ है। तो बॉस, ड्रॉप द प्रेशर, अपना फेवरेट ड्रिंक उठाओ और बैकग्राउंड नॉइज को कैंसिल करके मेरे साथ चिल करो। वैसे भी इफ यू हैव सीन अंतराज लेटेस्ट अपडेट्स, आपके दिमाग में एक ही गाना आया होगा, आज फिर कितने चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके मैडम। मोरनी बनके कितने चल रही है, है कुड़ी कितने जा रही है, दस तो बताओ भाई, मुझे बताना तो बनता है।

0: बनके।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: सारी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक टू मस्ती हैंग आउट, मैं हूँ आपकी अपनी मुग्धा आपके साथ एंड दिस वन इज डायरेक्ट फ्रॉम सिंगापुर स्टूडियो। भाई स्टूडियो के बाहर का सीन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ थोड़ा बदल जाता है, वैसे वक्त बेवक्त सिंगापुर का मौसम है झटके से बदल जाता है, पर फिलहाल वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि मई के एंड तक ये थंडरी शावर्स और एक्सट्रीम वार्म वेदर का डबल डोज चलता रहेगा, मतलब एक में दो का मजा भी लेगा, समझ रहे हो ना बात का। टेम्परेचर जो है वो 35 टच कर रहा है, मतलब पूरी चिपचिपी गर्मी का मौसम आया और फिर अचानक से रेन इज फॉलिंग झमाझम झम टिप टिप बरसा पानी, ऐसे गाने हम बजाएंगे। मतलब हम ना यहाँ पे सब एसी में बैठ के धूप और पानी का कॉम्बो झेल रहे हैं कसम से। इसी वेदर से जुड़ा एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैप्सूल मेरे इंटेलिजेंस कैप्सूल से निकल के आया है। क्या आपको पता है कि बारिश के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है उसे क्या कहते हैं? ये एक्चुअली ना मिट्टी के बैक्टीरिया और प्लांट के ऑयल्स के मिक्स होने से बनती है, लेकिन इसको कुछ कहते हैं। अब आप मुझे बताओ इसको क्या कहते हैं? ये इतनी कमाल की होती है कि हमारे मूड को इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देती है। वेदर जो भी हो, स्टूडियो का मूड तो कूल ही है, पर ये खुशबू इससे बेहतर कुछ नहीं। बताओ क्या है ये खुशबू? इसका एक नाम एक टर्म है। 9151893 पर आकर बताओ। कुछ भी मत ले जाओ। स्टे ट्यून्ड।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7
1: Live. Hi, welcome back to Masti Hangout. हम रोज स्टूडियो में बैठ के रोजमर्रा की बातें करते हैं, पर कभी कभी ना रियल लाइफ में ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो आपको ह्यूमैनिटी पर भरोसा वापस दिला देती हैं, लेकर आती हैं। इनफैक्ट आज के वक्त में सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट पर अचानक से एक पैसेंजर को बहुत ही ज्यादा सिवियर एनाफिलैक्टिक शॉक, यानी कि एक बहुत ही डेडली एलर्जिक रिएक्शन हो गया। अब फ्लाइट पर ना डर का माहौल बन गया, पर यू नो व्हाट, खुशकिस्मती क्या है, उसी फ्लाइट पर एक सिंगापुरियन डॉक्टर कपल जो है वो सवार था। उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने मेडिकल प्रैक्टिसेस का पूरा पूरा फायदा उठाया, लिमिटेड मेडिकल सप्लाईज के साथ मिड एयर उस पैसेंजर की जान बचाई। ये होते हैं रियल लाइफ के सुपर हीरोज और ये होती है उनकी एनर्जी। आपको पता है कि ये जो एनाफिलैक्सिस है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है और एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे में जो एड्रेनलिन है ना, उसका एक इंजेक्शन ही आपकी जान बचा सकता है। देखा, संजोग संयोग काफी अजीब होते हैं। तभी तो उस फ्लाइट में एक नहीं दो दो डॉक्टर्स थे और वो तो वेकेशन पे जा रहे थे ऑफ ड्यूटी पर। उन्होंने ओथ ली थी तो जान तो बचानी थी, एंड मोर ओवर देयर डॉक्टर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसानियत, समझे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी? जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: नाचने का मन है मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
4: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Musti Hangout with RJ Mugdha. Radio Musti 24/7 Live.
5: हेलो वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। अगर आपको लगता है कि सिंगापुर में सिर्फ गर्मी बढ़ रही है तो थोड़ा अपनी पॉकेट पर नजर डालो। एक खबर के अनुसार, एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से पेट्रोल और रिटेल डीजल का दाम जो है ना आसमान छू रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। लोग परेशान हैं, दे आर लाइक वेरी वरीड। हमारे कैबी, स्कूल बस ऑपरेटर्स, वो सब बहुत परेशान है। पर बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, ये क्राइसिस चुपके से आपके किचन तक पहुंच रही है। जेट फ्यूल महंगा होने से एयर फेयर्स बढ़ रहे हैं, है ना? एंड उसके बाद अगर आप देखें तो जो फ्राइड चार्जेस हैं उनके बढ़ने से चीज़ें, शुगर, वीट, ऐसी जो ग्रोसरीज हैं उनके दाम जो है वो बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ने वाले हैं। इस ग्लोबल टेंशन से एक बात मुझे जो है वो ध्यान आती है कि डू यू नो, दुनिया का 1/3 जो ट्रेडेड फर्टिलाइजर है उसी एक रास्ते से गुजरता है जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। यानी मिट्टी की खाद महंगी होगी तो क्रॉप्स महंगे होंगे और आगे चल के हमारी प्लेट में सजा हुआ खाना भी। तो फाइनली वो जो कहते थे ना कि खाने की इज्जत करो, वो बोला तो बहुत समझने का वक्त आ चुका है। पर चिंता मत करो, फ्यूल शॉर्टेज नहीं है, प्राइसेस थोड़े टाइट हैं ताकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back. मैं हूँ आपकी मुग्धा और अब वक्त है हमारे supercharged Bollywood R का। जी हाँ, ये वो R है जहाँ पे हम बातें करते हैं spiced up energetic Bollywood entertainment, या फिर Hollywood की भी बात कर सकते हैं। No worries. फिलहाल ना Bollywood में सिर्फ boring sequels बन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये बहुत अमेजिंग खबर है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था, पर बॉलीवुड में कुछ चीजें जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाती हैं उन पे विश्वास करना बेवकूफी लगती है। सो तुम्बा 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और इस बार सोहम शाह के साथ पता है कौन है लीड रोल में? वो है हमारी प्यारी आलिया। मैंने पहले भी कहा था पर उस वक्त कैमियो शामियो की कोई बात चल रही थी, पर यू नो व्हाट, उनका एक बहुत ही मैसिव एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। जस्ट इमेजिन, बॉलीवुड की टॉप मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस अब उस अंधेरी डरावनी और लालच से भरी दुनिया में कदम रखने जा रही है, पर वो बनेंगी क्या सम देवी और समथिंग, या वो भी निकलेंगी खोज में कि वो है क्या जिसके बारे में सब सोचते रहते हैं। इसी सिनेमैटिक अपडेट से जुड़ी एक और मेरे दिमाग में बात आई है फ्रॉम माय इंटेलिजेंस कैप्सूल। डू यू नो कि फिल्म तुम्बाड़ को शूट करने में पूरे 3 साल लग गए थे, क्योंकि डायरेक्टर को सिर्फ रियल मॉनसून की बारिश चाहिए थी और रियल मॉनसून की बारिश होने में 3 साल लग गए। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू वॉच तुम्बाड़, उस बारिश को देख के आपको लगता है बस ये देखते ही रहो और देखते रहो, बिकॉज इट वॉज ऑल रियल, दूर दूर तक असली था सब कुछ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कोई बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आर जे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, मस्ती हैंग आउट पर आप सुन रहे हैं अपनी मुग्धा को। अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। बॉलीवुड के भाईजान सलमान जो है ना, उन्होंने मतलब उनकी वैरायटी जो है ऑफ इंटरव्यू सबको पता है, पर अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी बात कह रही थी जिससे उनके दिमाग हिल गया। सारे स्क्रिप्ट राइटर सोच रहे होंगे, हैं तो हम क्या कर रहे थे इतने दिनों से। खैर, उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं। आइला सलमान ने कहा कि आई हैव रिटन देम बट आई हैव नेवर रेड देम। अच्छा, मतलब 3 डेकेड से सुपरस्टार बिना स्क्रिप्ट पढ़े सिर्फ प्रोजेक्ट का कमर्शियल पोटेंशियल देखते हैं एंड ओवरऑल फील देख करके ब्लॉकबस्टर्स दिए जा रहे। भाई साहब यार, भी सलमान भाई ने बागी, वीर, दबंग 3 ऐसी फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद लिखी है, समझे? होड़ होड़।

0: नहीं पता था ना, काश पढ़ ली होती। लिखते वक्त तो पढ़ी होगी ना। हाँ पता नहीं।
1: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
2: Check it out.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ मुग्धा। सिंगापुर में मैंगो सीजन चल रहा है, गिरा हुआ आम तो बिल्कुल मत उठाना, समझ में आया? हम सब आमों के पीछे पागल हैं, मैंगो पगलू पीपल, फांजोस हो, देवगिरी के हो, है ना? पर इस मीठी खुशबू के पीछे ना एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है ना उन इलीगल इम्पोर्टर्स पे जो मैंगोस को आर्टिफिशियली पका रहे हैं, यू नो, कैल्शियम कार्बाइड से। ये हर जगह होता है, हर जगह, हर जो आम का सीजन आपने को मिलता है। लोकल भाषा में इसको मसाला जो है उसका इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए। नेचुरली ये पके हुए नहीं होते। ये केमिकल जो है मॉइस्चर को एक कॉन्टैक्ट में आता है और जैसे आता है एक तरह की गैस छोड़ता है जो कि फल को पका देती है। पर वो सिर्फ ऐसे पकाती है कि वो दिखे पका हुआ, अपने पीछे काफी कुछ ऐसा छोड़ जाती जो कि बहुत ही टॉक्सिक है, जिसकी आर्सेनिक, फास्फोरस ऐसे टॉक्सिक रेसिड्यूज। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आम की जगह आपके पेट में क्या जा रहा है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में आम जाएं तो आपको क्या करना है, आपको ggmartonline.com से ही आम मंगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको असली देवगढ़ के अल्फांजोज और रत्नागिरी के अल्फांजोज मिलेंगे, और वो भी अमेजिंग, सीधा आपके घर दरवाजे पर, समझे? और तो और अगर आप एक बहुत ही अमेजिंग कोड है जो कि है न्यू 10 उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। और अगर आप ggmartonline की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन का एक स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो आपको और ऑफर्स मिलेंगे, समझे? तो आपको पता है कि क्या आपको पता है कि अथॉरिटीज ऑफ वेयर हाउस में एक स्पेशल स्ट्रिप पेपर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट करते हैं, यूज कर रहे हैं। ये स्ट्रिप हवा में जो एक गैस है ना, एसिटिलीन गैस, जो उसको चेक करती है, और जैसे कलर बदला इलीगल कार्बाइड का पर्दा फाश हो जाता है। ये तो बुरी फिल्मी स्क्रिप्ट हो गई है ना। खैर, आम और आम के आम, गुठलियों के दाम, सब कुछ ggmartonline पर। यहाँ पे सिर्फ आम नहीं मिलते, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और सब चीजों पे न्यू 10 का अगर आप लगाते हैं तो आपको कूपन कोड की वजह से 10% का इन टोटालिटी ऑफ भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज पे कोड दबा दिया, इन टोटालिटी न्यू 10 का कोड लगाएंगे न्यू 10 तो आपको 10% की छूट मिलेगी। पर आम, आम सीजनल है तो पहले आम लपक लो, बाकी चीजें आम के बाद, समझे?
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, वेलकम वेलकम, हवा में भी वेलकम है, मेरी जुबान पे भी वेलकम है, देयर सो मच ऑफ वेलकम। अक्षय कुमार के वेलकम टू द जंगल है ना, उसका टीजर आया है और लोग कह रहे हैं कि स्टोरी बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है। एक फेक फिल्म की शूटिंग चल रही है, गलत डायरेक्शन में चली जाती है। हेलो, नॉक नॉक। ये सुन के क्यों मेरे दिमाग के घोड़े दौड़े और क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये फेक फिल्म की शूटिंग मैं वेलकम में भी देख चुकी हूँ और उसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे अक्षय कुमार काम कर चुके हैं, जहाँ पे ऑस्कर्स लेके अक्षय कुमार चले जाते हैं, नहीं अक्षय खन्ना चले जाते हैं। 30 मार खान, कैसे कह रहे हो यार कि ओरिजिनल है? खैर पता नहीं इसमें क्या ओरिजिनल होगा, मतलब वेलकम में भी तो समझ रहे ना, और 30 मार्खा में मनोज रामलिन बन करके भी तो वो फेक शूट कर रहे होते हैं। मतलब बॉलीवुड वाले जो हमें क्या समझते हैं, 24 एक्टर्स को स्क्रीन पे आपने ऐसे ठूंस दिया है स्क्रीन में, कुछ कुछ कुछ कुछ दिख जाएंगे, खिचड़ी बन गई बीरबल की पटल, कोई बात नहीं। आपको बताऊं ये जो मेटा मैडनेस है ना, उससे जुड़ा एक इंटेलिजेंस कैप्सूल है मेरे पास। इफ यू नो एंड डू यू नो कि बॉलीवुड में इस तरह की चीजों के लिए ना ट्रूथ के लिए एक एग्जैक्ट टर्म है जिसको कहते हैं द कॉन फिल्म, जहाँ पे कैरेक्टर्स मूवी बनाने का नाटक करते हैं, असली फ्रॉड को अंजाम देते हैं, और ये बिल्कुल भी बॉलीवुड में नया नहीं है।
2: कल मिठी मिठी बोल, दस कानों विच बोल, बजने दे ताशे ढोल, मस्ती में तू ही डोल, बन दे ना ना तू खोल।
1: किसने बोला ये, किसने बोला ये, सामने लेके आओ मेरे, बात करते हैं।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page. Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। शो के दौरान द लास्ट आवर में आ गए। खुशी इस बात की कि ये आर वन ऑफ माय फेवरेट है जी। ऐसी सी बातें मुझे पता लगती हैं ग्लोबल लेवल पे जो हो रही होती हैं कि मजा ही आ जाता है। यू नो ग्लोबल टेंशन्स और इन्फ्लेशन की बातों के बीच में आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो आपको इंसानियत पे दोबारा भरोसा दिलाएगी। पहले तो एक बार आपको करा चुकी हूँ फर्स्ट आवर में, अभी ये वाला भरोसा वापस से कायम होगा। चाइना के एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने जब ये सुना कि उनके क्लासमेट के मदर की सडनली डेथ हो गई है और उस पहाड़ी एरिया तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है, पता है उसने क्या किया? उसने बिना एक पल भी सोचे और गवाए अपनी कार निकाली, लगभग 1300 किलोमीटर तक बिना रुके पूरी रात उसने ड्राइव किया ताकि उसकी क्लासमेट अपनी माँ को आखिरी बार देख सके। वो खुद बीमार पड़ गया पर उसने पेट्रोल के पैसे तक लेने से मना कर दिया। हे भगवान, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? यू नो वॉट, साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी एक बार और उसके मुताबिक जब हम सेल्फलेस होकर के किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अरे डॉल्फिन नहीं, एंडोर्फिन्स, आप तो गजब ही हो यार, डॉल्फिन। एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल होता है, वो रिलीज होता है और साइंस हेल्पर्स हाई कहते हैं। मतलब लोग तो पता नहीं कैसे कैसे हाई होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना एंडोर्फिन रिलीज होते ही हेल्पर्स हाई मोड में चले जाते हैं। मदद करनी है मतलब करनी है, जी जान लगा देंगे, हाय। ऐसे दोस्त ना बहुत नसीब से मिलते हैं अगर आपके पास ऐसे हैं। जाने नहीं देना, पकड़ के रखना, बांध के, समझे?
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपर्ट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय एवरीवन, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो US के इस बंदे की ना कहानी सुनो। इस आदमी ने एक या दो बार नहीं, पूरे 18 बार लॉटरी जीती है। किस्मत खराब, लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं, पर इसने ना अपना सीक्रेट रिवील किया। उसे का कोई जादुई ट्रिक नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। तो अपनी खराब किस्मत कैसे ठीक करनी है पता है? सुनो, प्योर मैथमेटिक्स और कंसिस्टेंसी। ये हर हफ्ते एक ही स्पेसिफिक सीक्वेंस के नंबर्स बिना बदले खरीदता रहा, जब तक प्रोबेबिलिटी ने अपना काम करके दिखाया नहीं। इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथ, समझे? एक्चुअली मैथ्स एंड कैलकुलेशन। लोग सोचते हैं कि लक अंधा होता है, पर इसने लक को सिस्टम में बदल दिया। अब इनका जो लक था वो सिस्टमैटिकली चल रहा था अकॉर्डिंग टू मैथ्स एंड कैलकुलेशन। इसी लॉटरी जैकपॉट से जुड़ा एक बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट है मेरे पास। हाँ, वो कैप्सूल से निकल के आया है कि मैथ्स की भाषा में ना इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ट्रूली लार्ज नंबर्स। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी, जो मैथ्स के ज्ञाता होंगे, उनको ये बात पता होगी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर आप किसी अजीब चीज को बार बार बार बार ट्राई करते रहते हैं तो उसके होने के चांसेस अननोटिसेबल से लगभग कन्फर्म हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? अजीब चीज ट्राई करने? कुछ ऐसा अजीब मत करना है ना। हाँ, लॉटरी का नहीं,

0: जो एनीवेज मैंने क्या ही बता दिया आपको, मतलब कुल मिलाकर ये मैथ्स का फंडा है। आपका लकी नंबर क्या आपको पता है? बताओ बताओ।
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live.
1: Oh my gosh! अगर आपको लगता है कि Monday morning hangover सिर्फ इंसानों को होता है, you're absolutely wrong. मेरे पास जो खबर है वहाँ पे इंसानों के साथ साथ एक डियर डियर को भी हो गया, डियर डियर एक वीडियो है, उसको देख के ना मजा ही आ जाएगा आपको। फ्रांस की पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए एक अजीब सी वार्निंग जारी करी है। एक बेचारा डियर जंगल के बीच में गोल गोल गोल गोल घूमर घूमर घूमर घूमर घूमर ऐसे घूम रहा है गोल गोल, क्योंकि वो पूरी तरह से मेटली मेटली मेटली हो गई। पता है क्या हुआ? हुआ ये कि उसने जमीन पे गिरे हुए फर्मेंटेड एप्पल्स और बेरीज खा लिए। जी, वो किसी बाहर में नहीं गया था। नेचर ने उसको ही बार उसके सामने ला के दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो दिख रहा था। इसमें क्या होता है ना, जब फर्मेंटेड हो जाते हैं एप्पल्स एंड बेरीज तो उनमें नेचुरल अल्कोहल बन जाता है। अब बेचारा सीधा चल भी नहीं पा रहा है और पुलिस कह रही है भैया ड्राइवर्स ध्यान रखें, रास्ते पर पिए हुए डियर हैरान परेशान घूम रहे हैं, अगर आपको दिखे तो इनसे दूर रहें, इनके पास जाने की कोशिश ना करें। यू नो, जब एनिमल्स इंटेंशनली ऐसी चीजें खाकर अपना मूड बदलते हैं तो उसे बायोलॉजी में एक टर्म है, कहते हैं ज़ू फार्माकोग्नोसी। वाओ, बड़ा लंबा नाम है, ज़ू फार्माकोग्नोसी। नेचर में ना सिर्फ हैरानी नहीं है, एलिफेंट्स मंकीज ये भी हाई होने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। एनिमल्स का अपना अलग क्लब है भाई। यस, उधर जाना मना है, समझे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा। Only on मस्ती Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live.
1: और अब टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे अगले 3 घंटे का सफर, हमने पिछले 3 घंटे का सफर यहीं पे खत्म हो रहा है और अगले 3 घंटे के लिए हमें अगले शो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपकी मुग्धा मस्ती हैंगआउट पर आपके साथ थी डायरेक्ट फ्रॉम आवर सिंगापुर स्टूडियो। हमने वेदर की, चिपचिपी गर्मी की, मिड एयर हीरोइक्स एक्ट जो थी उनकी, दिमाग के अनोखे म्यूजियम्स की और हाई होते हुए डियर्स की एंड डियर डियर पीपल की सबकी बात कर ली। पता है आपको क्या, जाते जाते एक बात कहूंगी, लाइफ इज नॉट अ रिहर्स स्क्रिप्ट। नहीं, किसको पढ़ लिया जाए और जी लिया जाए। सलमान खान की तरह बिना स्क्रिप्ट के अगर आप एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट हैं तो आप जी रहे हैं। यहाँ पे हर मोड पे आपके पास सरप्राइजेस हैं। रूटीन को अपना ब्रेक जो है ना उसको लगाने मत दो, रूटीन को लाइफ में आने दो पर ब्रेक मत लगाने दो। खुद को लूप से बाहर निकालो, लूप लपेटा देखिए, उस लूप लपेटे से बाहर निकलो। इट्स अ फाइनल साइन ऑफ और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ इंटेलिजेंस कैप्सूल का मोमेंट आता है। यू नो व्हाट, रेडियो की भाषा में ऐसे कहते हैं कि जब आप अपने आखिरी वर्ड्स को ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं द गोल्डन आउट्रो, जो लिसनर के दिमाग में घंटों तक गूंजते हैं। क्या मेरी कोई भी बात आपके दिमाग में घंटों तक गूंजती है? क्योंकि मेरा बोला हुआ मुझे अगले मिनट याद नहीं रहता। जस्ट किडिंग, आई विश समडे कि मेरी भी कोई भी बात, नॉट जस्ट द आउट्रो, कोई भी बात आपके दिमाग के लिए गोल्डन आउट्रो बन जाए और वो दिमाग में घूमती रहे। मैं तो एक ही बात कहूंगी, सीन सॉर्टेड रखो और मुग्धा स्टाइल में वाइप करते रहो। अगले शो तक की मुलाकात के बीच का सफर मजेदार रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डेज अहेड।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: If Itar had a sound, this would be it. Hoy, hoy, hoy.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे.
3: Take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out.
6: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
7: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com ग्रोसरी एड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप
1: वाजी क्या बात जी
0: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन ऑल इज वेल आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर मस्ती वॉइस आपकी चॉइस
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
4: चेक इट आउट जोश में रहो

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Sky Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh mein raho.
3: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
4: वेंसडे को वो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेस आएंगे। हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें। अच्छा सुनो, जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
3: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में रहो।
3: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.
0: अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: ओ दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओ दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई ओ।

0: वो दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत से लड़ी आई ओए, वो दिल है रांझणा मेरा जिद ते अड़ी आई ओए, दिल है रांझणा किस्मत।
1: Welcome to your chill zone, Masti Music Cafe. Only music, only masti.

की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: परवाने का पता नहीं लेकिन ये परवानी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आ पहुंची है। 5:00 हो चुके हैं 6 मिनट बाय द स्टूडियो क्लॉक रेडियो मसी 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ। गुड इवनिंग नमस्ते वेलकम। बात करते करते 5:00 हो चुके हैं 7 मिनट भी। भाई सेकंड जो है हर वक्त हर पल इतना ज्यादा मैटर करता है और ये सारी की सारी ज्ञान भरी बातें पता नहीं क्यों मंडे को ही जो है जहन में आती है। समटाइम्स आई फील कि ये जो मंडे ब्लूज वाला होल कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में एक तरह से देखा जाए तो होता ही है ना। कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है कि मंडे और वेंसडे के शोज को स्वॉप कर दिया जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, है ना। मिडवीक ब्लूज पता नहीं क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जब तक हम मिडवीक पहुंचते हैं तब तक वो ब्लूज हमारे जाने लगते हैं, मूड हमारा ऑलरेडी चेंज होने लगता है और हमको फ्राइडे वाली फील जो है और भी ज्यादा अर्ली आने लगती है कि बस उतना ही तो दूर है। बट अब मंडे का क्या करें, है ना। अब इसके और से भाग भी नहीं सकते हैं बट इसको इस तरह से ले सकते हैं कि चलो तैयार हो जाओ जवान, अभी तो पूरा हफ्ता अब बाकी है। लेकिन जब आने वाले हफ्ते में नजर आ रहे हो लॉन्ग वीकेंड्स तो मूड अच्छा नहीं हो जाता है। जी हाँ, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। हाँ, मैं अभी से आपको छेड़ना शुरू करूंगी क्योंकि हर उस इंसान को जिनको छुट्टियां मिलती है ये लॉन्ग वीकेंड वाली, तो उनको छेड़ना एटलीस्ट हम सभी को एक हक सा तो बन ही जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपका एक हक है जो आज की डेट में आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम यू एंड दैट इज व्हाट, ये है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट वाले गाने जो है अब वो यहाँ पर मैं बिल्कुल प्ले करने को तैयार हूँ। तो आपने क्या करना है कि अभी तो हमारी यहाँ पे गाड़ी शुरू हुई है तो मैं जरा खबरें लेकर आती हूँ, कुछ पाने वाने पी लेती हूँ, तब तक आप सोचिए कि आपका मूड कैसा है, ठीक है। आपको गाने कौन सा सुनना है तो एक हो दो हो जस्ट बिंदास मुझे बता दीजिए यहाँ पर और मैं अकेले यहाँ पे प्ले कर दूंगी, दैट इज फॉर श्योर। बट उसी के साथ साथ जो है ये भी बताइए कि आज सुबह से आपका दिन कैसा गया, क्या आप एक बिजी ऑल गुड चिल सो सो या फिर वेरी वेरी गुड। ऑल द पीपल हु हैड अ वेरी गुड मंडे सिंस मॉर्निंग प्लीज डू कनेक्ट विद मी, ठीक है 1518963 पर, क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कैसे नहीं क्यों। कमिंग अप नेक्स्ट बर्फी से यही वाला गाना ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड इवनिंग।

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: 12 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: 5 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैक के साथ चल रहा है यहाँ पे मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, एंड धीरे धीरे आप की मंडेज के बारे में पता चल रहा है। इट्स गुड टू नो दैट यू नो व्हाट यू डू एज वेल।

से कैसा क्या जा रहा है. एंड इट इज ऑल्सो गुड टू नो दैट अक्षय कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में. मुझे एक चीज तो हमेशा से पता थी दैट एक ऐसा एक्टर पूरे हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो हमेशा सुखी रहेगा और हमेशा ही विल यू नो ही विल बी ऑलवेज बी इन अ सेफ स्पेस, दैट्स नन अदर देन हमारा अक्की. एंड आई थिंक दैट टू बिकॉज बहुत आई थिंक लॉन्ग बैक आई स्पोक टू हिम, मैंने इंटरव्यू लिया हुआ था और तब उन्होंने जो बोला हुआ था और यू नो हम तो उनको यही कहते थे भाई आप तो नोट छापे जा रहे हो एंड ही डजंट केयर इफ यू एक्चुअली सी द ट्रेजेक्ट्री ऑन द काइंड ऑफ मूवीज ही ऑलवेज डज, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन इट. एक टाइम के बाद तो उन्होंने कहा कि भाई मैं साइन कर देता हूँ, एक्टिंग इज समथिंग कम्स नेचुरली टू मी, कुछ भी करवा लो मैं तैयार हूँ, पैसे मिलने चाहिए नहीं. बट ये जो बंदा है ये करते करते नौ अक्षय कुमार ने बना दी है एक हिस्ट्री. ही हैज बिकम द ओनली इंडियन एक्टर विथ 20 फिल्म्स इन द 100 करोड़ क्लब. हालांकि 100 करोड़ आज की डेट में कुछ भी नहीं है बट स्टिल विद भूत बंगला क्रॉसिंग द 100 करोड़ का जो माइलस्टोन, ही सरपासेस स्टार्स लाइक हमारे सलमान खान शाहरुख खान एंड या इट जस्ट प्रूव्स दैट कंसिस्टेंसी एंड डोमिनेंस जो होता है ना एट बॉक्स ऑफिस ओवर द इयर्स कहीं ना कहीं तो भाई पता तो चलेगा ही. सो अक्षय कुमार हैज 20 फिल्म्स जिसने 100 करोड़ का मार्क जो है बिल्कुल पार किया हुआ है. सलमान खान हैज 18 फिल्म्स इन हिज किटी. इन दैट केस अजय देवगन इज एट थर्ड प्लेस इस लिस्ट में विद 16 फिल्म्स एंड शाहरुख खान हैज 10 फिल्म्स जो 100 करोड़ से जो है ज्यादा उन्होंने बॉक्स ऑफिस में कमाया. या बड़ा अजीब सा लग रहा है ना शाहरुख खान का नाम एकदम टूवर्ड्स लाइक नंबर 4, बट दिस इज इट इज वॉट इट इज. बट उसी के साथ साथ भाई एक और यहाँ पर जो है कमाल की रिक्वेस्ट आई है. हमारी दिशा जो है उनकी दिशा भी बिल्कुल सही जा रही है. रेणुका की तरफ जा रही है उनकी दिशा. आई टेल यू वाई. लास्ट फ्राइडे अगेन ऑफकोर्स आई गॉट कॉट एंड हमने टॉप चार्ट किया एंड मैंने बहुत कोशिश की कि उनका ना जो जाइए सजना ना उनको उसको जाने को ही बोल दिया जाए बट सम हाउ इट केम बैक एंड मैनेज टू स्टे देयर. I like that song as well, but you know, छेड़छाड़ तो चलती रहनी चाहिए, है ना, so Disha, आपकी request बिल्कुल यहाँ पे मैं play करने वाली हूँ from the soundtrack of Dhurandhar the Revenge on Radio Masti 24/7 Live. This is जाइए सजना, आज जाइए सुन के वापस आइए और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया over the weekend.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: इट्स 5:31 बाय द स्टूडियो क्लॉक. गुड इवनिंग, नमस्ते. जी हाँ, सीधा चलते हैं सिंगापुर की सड़कों की ओर. बताते हैं आपको ट्रैफिक का अपडेट. व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन ईसीपी टुवर्ड्स सिटी आफ्टर मरीन परेड. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन SLE towards BKE after Yeochukang Road. और vehicle breakdown आपको मिलेगा on BKE towards Woodlands after SLE. So well, ये रहा इस घंटे का traffic update. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, over the weekend finally जो है मैंने धुरंधर the revenge जो है the second part. Yes, I saw that and oh God, जैसे तैसे करके मैंने first वाली देखी थी. मतलब इस वाले में भी कई बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर I was like मेरे को बता देना जब ये फिनिश हो जाए. हाँ क्योंकि मुझे नहीं देखना. सी एवरीथिंग वॉज वेरी गुड बट देन आई जस्ट कन्फर्म्ड माई फीलिंग्स विद द गोरी कॉन्टेंट दैट आई जस्ट कैन नॉट. ठीक है, तो ऐसा हो गया है हमारे साथ. इसी बात पे चलते हैं सीधा हैदराबाद. व्हाई हैदराबाद? बिकॉज हमारे संदीप जी जो है ही इज कनेक्टिंग एंड ट्यूनिंग इन इंडिया में. हैदराबाद इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है वहां पर. 42-43 डिग्रीज चल रहा है. वेरी वेरी हॉट. एंड आई नो फॉर अ बैक बिकॉज माई मॉम इज इन कानपुर. सो शी इज सेइंग कि भाई बहुत ही अलग लेवल की गर्मी जो है ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है. सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. अ ब्यूटिफुल ट्रैक, तेरे नाम मूवी का जो है टाइटल ट्रैक रिक्वेस्ट किया संदीप जी ने. एंड दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू प्ले राइट हियर राइट नाउ ऑन मस्ती वॉइस. आपकी चॉइस. गुड इवनिंग.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, Musty Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musty Top 20. Only on Radio Musty 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. Josh Mehra.
1: आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले
2: 5:40 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंड अंतराब के साथ मस्ती बॉयज आपकी चॉइस यानी कि रिक्वेस्ट शो चल रहा है और थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत टाइम के बाद तेरे नाम का टाइटल ट्रैक जो है यहाँ पर जो संदीप जी ने रिक्वेस्ट किया आपके चक्कर में हम सभी ने सुन लिया एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल राइटिंग टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट ओ माई गॉड इट्स बीन एजेस लिसनिंग टू दिस गाना क्योंकि ये हर दिल टूटे आशिक का जो है जुबान बन चुका था ये गाना कि भाई तेरे लिए अगर मतलब कोई ऐसा फीलिंग दिखाना हो ना इमोशन दिखाना हो कि मतलब मैं इतना प्यार करता हूँ एंड दैट मूवी वाज आल्सो बाय द वे ओ माय गॉड अलग ही कुछ लेवल की वो मूवी थी जिसमें सलमान खान ने कुछ अलग ही लेवल का जो है काम किया हुआ था बट देन टॉकिंग अबाउट सलमान खान बाय द वे आपने क्या उनका लेटेस्ट पोस्ट कैच किया आई एम स्टिल काइंड ऑफ कैचिंग अप टू इट व्हाई क्योंकि उसमें जो है ना हमारे सलमान खान जो है ऑफ कोर्स शर्टलेस बैठे हुए हैं एंड उनके सिक्स पैक एब्स या मैं तो अपनी सिर्फ ऐब ही देख रही हूँ जी हाँ वो वाली ऐब जो हिंदी में कहते हैं ये इंग्लिश वाली ऐब्स बना के बैठे हुए हैं आफ्टर सो मच ऑफ ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग जगह जगह पे उनको कहा गया कि ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑल दोज थिंग्स सो या इट्स अ वेरी नाइस फॉर अ चेंज पिक्चर सो ही हैज ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन विद दिस शर्टलेस पिक्चर एंड ही हैज रिटन दैट ही इज अलोन बाय चॉइस अलोन इज बाय चॉइस लोनली व्हेन नोबडी वांट्स यू Very, very cryptic, right? On loneliness. By I, me, myself. Two ways to be by yourself. Alone and lonely. Ab iske aage, you figure out what you need to do. I am sure that he must have been going through a lot. When was it last time when we were talking about Salman Khan like this? It's been really, really long. I think wo Battle of Galwan ke time par thoda bahut shayad kuch baat chal rahi ho. Uske baad then nobody was talking about anything. I think he is going through a lot of passion, but that's what I think. Radio Musti 24/7 live, but if he has got back those abs, sir, yeah. Not bad, not bad. Coming up next is Asis Kaur ke saath Yasir Desai ki awaaz. From the movie Drive, halaki movie drove everybody crazy. Apne usse, but then Gana was quite nice.

हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट्स सुनो।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: That's right. If you have not tried and ordered GGMart से आम, तो फिर आपने काफी कुछ मिस कर रखा है जिंदगी में अपने, क्योंकि मैं तो एक दो राउंड करके ऑलरेडी जो है बिल्कुल ट्राई कर चुकी हूँ, एंड आई कीप ऑन लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। मेरा लेटेस्ट हो गया GGMart के आम और घर की जमी हुई दही, दोनों को मिक्स करके अगर आप खाओ ना तो मतलब अल्टीमेट हेवनली एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होता है दिस कॉम्बिनेशन से। आजकल पूछ लो मुझसे जितनी हेल्दी बातें पूछनी है ना, तो अगर आपने GGMart के मैंगोज ट्राई नहीं किए हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड गो एंड ट्राई दीज मैंगोज आउट, दे आर रियली रियली हेल्दी एंड गुड। एंड बहुत सारा कुछ है जो कि इसके बारे में मुझे धीरे धीरे जानने को मिल रहा है जो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन फिलहाल बताना ये है कि इस घंटे को रैप अप करते हैं और अगले घंटे में मिलते हैं। एंड also there's a lot of the hilka which has been happening with deep fakes and all, and recently something big happened in Singapore regarding it. Let me come back and tell you. And aap soch ke rakho kaun sa gana aap sunoge, waise ye gana cut zarur jayega. koi kuch kahega nahi mujhse।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।

हाँ, तुम ही डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, दैट्स राइट। ये है शो का नाम, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। वेलकम इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अभी अभी कुछ लोगों ने ट्यून इन किया हो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 6:00 हो चुके हैं यहाँ पर 6 मिनट। भाई हाल ही में एक बड़ा बड़ा केस जो है वो वायरल हुआ सिंगापुर में, एंड वी आप में से कई सारे लोगों को पता होगा और शायद कई सारे लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। सो सिंगापुर पुलिस फोर्स जो है उनके पास एक फुटेज उनके हाथ लगा है ऑफ द एआई जनरेटेड जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल दैट वाज पार्ट ऑफ अ स्कैम इन्वॉल्विंग इम्पर्सनेशन ऑफ सीनियर गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स। एंड कोई आम ऑफिशियल्स पे यहाँ पे बात नहीं हो रही है, इट इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर वोंग। या एक केस में जो है विक्टिम लॉस्ट एटलीस्ट $4.9 million इन व्हाट वाज क्लेम टू बी अ फंडिंग असिस्टेंस रिलेटेड टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो विक्टिम्स जो है वो टिपिकली रिसीव एक व्हाट्सएप का मैसेज फ्रॉम स्कैमर जो इम्पर्सनेट कर रहा है टू द सेक्रेटरी टू द कैबिनेट आस्किंग देम टू अटेंड अ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर वोंग के साथ, एंड दे वुड देन बी इनवाइटेड टू अ जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस जो कि फैब्रिकेट किया गया है यूजिंग डीप फेक एआई टेक्नोलॉजी दैट अपीयर्ड टू हैव been involved Mr. Wong as well as the other local and overseas government ke officials. ye jo footage hai usme dikhaya gaya ja raha hai, it's so real, I can like it's so very like Minister Indrani Raja and the representatives from the Monetary Authority of Singapore, they are all looking so real. aajkal sach mein nahi samajh mein aa raha hai boss ki kis baat pe bharosa kare, and honestly आजकल कभी कभी होता है कि कुछ कुछ लिसनर्स हमको लिख के भेजते हैं कि हमें क्या पता, ये तो स्कैम भी हो सकता है। वी अंडरस्टैंड कंप्लीटली, यू नीड टू वेरीफाई लाइक 10,000 टाइम्स, यू हैव टू, इट इज गुड टू बी अलर्ट एंड इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज द एरा वी आर लिविंग इन एंड यू कैन नॉट हेल्प इट, राइट। सो वेल ऐसा सारा कुछ बहुत बड़ा केस बना इसका, एंड इट्स एवरीवेयर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस बेसिकली स्कैम में ये हुआ, एंड देन दे वुड प्रोसीड विद अ ब्रीफ कि वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएम वोंग डिलीवरिंग द क्लोजिंग रिमार्क्स एंड एवरीथिंग। देन एक स्कैमर जो कि लॉयर बन के आता है वुड सेपरेटली कॉन्टैक्ट द विक्टिम्स, कन्विंस देम टू ट्रांसफर मनी, एंड दैट इज हाउ दे लॉस्ट सो मच। दो इट हैज बीन शोन कि क्या क्या चीजें, बहुत सारी चीजें जो है ना, जब आप डीप फेक के वीडियोस होते हैं, एआई जनरेटेड वीडियोस होते हैं, आप पकड़ सकते हो, बट यू रियली रियली हैव टू लुक इनटू इट टू अंडरस्टैंड। बट अनदर थिंग, नन ऑफ द ऑफिशियल्स विल एवर एवर जूम कॉल विथ यू, दैट इज फॉर श्योर। प्लीज हमेशा सतर्क रहें, ऑलवेज ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, डोंट बिलीव इनटू एनीथिंग जस्ट बाय द वर्ड, राइट। सिर्फ हम पे विश्वास करो, हम कहेंगे कि मस्तियाबा प्ले होने वाला है तो वही होगा, बिकॉज वी आर ट्रस्टवर्थी। यस, गुड इवनिंग।

आई कैन ओनली इमेजिन भावना एंड हीना हैविंग द बिगेस्ट स्माइल्स एवर, क्योंकि सपना आंटी ने यहाँ पर ये जो है सीक्रेटली मुझे बोला कि ये वाला गाना चला दो, एंड या आई जस्ट वांट टू सी द स्माइल एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज. अब मुझे भी मम्मी पास जाना है, मुझे भी मम्मी की याद आ रही है. I hope you enjoyed the song. ये है मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस, एंड लेट मी कम बैक इस ब्रेक के उस पार, क्योंकि मुझे भी काफी कुछ इम्पोर्टेंट बताना है दोस्तों.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: 11 बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। 6 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट, दैट इज राइट। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस में बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम लोग जो है बिल्कुल इससे पहले प्ले करें कि अपना अगला जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर द गाना आई कैन सी इज ऑलरेडी फ्रॉम धुरंधर भाई। रणवीर सिंह हैज किल्ड इट, लाइक किल्ड इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सी आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि

ही में मैंने जो है ना मैंने देखी, मैंने धुरंधर द रिवेंज भी अब देख ली है. तो किसी को मेरे साथ डिस्कशन करनी है तो बिल्कुल खुलेआम डिस्कशन कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज दैट मुझसे गोरी सीन्स की डिस्कशन मत करना, क्योंकि मैंने वो जानबूझ के अवॉइड कर रखे है. मतलब देर आर थिंग्स विच आई कैन नॉट जस्ट टेक. बट देन टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह एंड हिज हेयर वॉज हेयरिंग अनदर लेवल अगेन. ठीक है, आई नो लाइक देर आर लॉट ऑफ एक्सटेंशन एंड एवरी थिंग used, but then oh my god, and the fitness level not bad bro, not bad. Well, Ranveer Singh jo hai officially becomes the first Indian male actor to achieve this massive global box office ka milestone post COVID, which is a 3600 crore, and it is still counting. कहां हम पिछले घंटे में 100 करोड़ चिल्लर नहीं लग रहे इसके सामने कि हम 100 करोड़ देख ही कर रहे हैं, यहाँ पे 3600 करोड़ एंड स्टिल काउंटिंग. आई मीन या डबल ओ माय गॉड. एंड अब तो बात ये भी हो रही है कि धुरंधर 3 जो है ना उसको भी लाया जाएगा. आई डोंट नो व्हाट स्टोरी लाइन दे आर गोइंग टू फॉलो आफ्टर दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर 1 और 2 में इन्होंने ऑलमोस्ट जो है अपनी दिल जान जिगर गुर्दा सब कुछ डाल दिया है. एंड बहुत अब इससे ज्यादा क्या ही गोरी दिखाएंगे इस नेक्स्ट लेवल के. आई नो यू हैव टू शो एक्शन एंड एवरीथिंग, बट देन देयर हैज टू बी अ स्टोरी लाइन एज वेल, राइट? ऐसा ना हो कि तीसरे तक पहुंचते पहुंचते स्टोरी लाइन भी इधर उधर हो जाए. बट यू नेवर नो. ओके, लेट अस नॉट सी एनीथिंग अबाउट धुरंधर, बिकॉज सीरियसली यू नेवर नो. रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव. पर फिलहाल तो मैं और तू, मैं ना ही गाऊं तो ही बेहतर है. लेट्स गो लिसन टू दिस गाना एंड या लेट्स कम बैक रेडियो मस्ती 24/7 अलाइव.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट.
2: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर 6:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे. सीधा चलते हैं और पता करते हैं सिंगापुर के ट्रैफिक का हाल चाल. इस वक्त आपको मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन केपीई टुवर्ड्स टीपीई आफ्टर बुआंगकॉक ड्राइव. हेवी ट्रैफिक की खबर ऑन केजेई टुवर्ड्स बीकेई एट चुआचुकांग वे एग्जिट. और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी आफ्टर जलान यूनोस. ये रहा इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, चल रहा है यहाँ पे मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. ये हमारा रिक्वेस्ट शो है, यानी कि अगर आपको कोई गाना सुनने का मूड है तो आप मुझे तुरंत बता दें 9158963 पर, क्योंकि यहां पर आज लिसनर्स का राज चलता है. वैसे तो आपका राज हमेशा ही चलता है, आज कुछ ज्यादा ही चलता है. आप एक के बाद एक और भी गाना, अगर हमारे पास वक्त बचा तो बिल्कुल वो हम प्ले कर ही देंगे. एंड इट ब्रिंग्स दिस beautiful feeling inside you which makes you smile and that is the ultimate goal जिसके लिए हम हर रोज इतनी मेहनत करते हैं. लेकिन कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही जब अपना लगता है तो गाना भी यूं ही अपना लगते लगते आ जाना चाहिए. Coming up next is exactly this one on Radio Masti 24/7 Live. Good evening.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
1: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
5: Good morning. आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला, मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले।
0: Let's talk about the Academy, Radio Masti 24/7 live on Trav ke saath, aur yahan par chal raha hai Masti Voice aapki choice. Ye jo itne farrate se jo ye Andhra aapse yahan pe baat kar rahi hai, now to it's been like really really long time, but if I go way way back jahan par meri khud ki hi matlab ekdam taza training shuru hui thi, let me only talk about my first day and first show because mujhe wahi yaad aata hai ki kya fayda hua. Kabhi kabhi main apne aap se ye poochti hu ki bhai itna, मैं जब यहाँ पर आई जॉइन रेडियो मस्ती तो मैं ऑलरेडी एक रेडियो जॉकी थी इंडिया में, और जो है मेरे पास एक्सपीरियंस भी था थोड़ा बहुत, एंड आई वाज लाइक कि मैं तो यहाँ पर एकदम पहले दिन ही आई नो व्हाट टू डू एंड एवरीथिंग, बट देन फर्स्ट डे आई डिड माय शो एंड देन इट द रियलिटी हिट्स यू एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दैट इट इज जस्ट नॉट यू नो ऐसे आम लोग जो सोचते हैं कि यू नो हमारे लिए ही सिर्फ डिफिकल्ट है, फॉर पीपल हु वर ऑलरेडी एक्सपीरियंस जस्ट लाइक मी व्हेन आई केम टू सिंगापुर, बहुत सारी चीजें जो है आपको इन अकाउंट लेनी पड़ती है व्हेन यू आर इन अ वेरी न्यू प्लेस एंड द डेमोग्राफिक जो है वो डिफरेंट हो जाता है, लोग डिफरेंट हो जाते हैं, आई वॉज केटरिंग, हमारी ऑडियंस कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, तो मुझे बहुत सारा कुछ था जो सीखने को था जो मैंने अनलर्न करके वापस से जो है सीखा और लर्न किया, एंड हियर आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद यू। सो यस RJ Academy, यू नो दैट वी हमारा एक बैच ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है, बट नाउ वी आर रेडी टू वेलकम अनदर बैच ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड। सी इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि आपको अपना यू नो आपने सोचा हुआ है, आपको फैंसी लगता है कि आपका एक रेडियो शो होना चाहिए, जनरली ऑल्सो इफ यू आर अमंग्स अ लॉट ऑफ पीपल, आपको स्टेज पे जाना है, आपको कोई एक स्पीच देना है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग जो RJ Academy में कराई जाती है, एवरीथिंग विल केटर डाउन टू दैट, दैट यू हैव टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस सो दैट जब आप कहीं पर जाओ तो आपकी आवाज श्रिल नहीं होनी चाहिए, जब आप कुछ बोलो तो आपके पॉजेस सही जगह आने चाहिए, आपकी बातें क्लियरली लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। सो वेल, चाहे इन सब में से किसी भी चीज में आपको काम करना हो, सो द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इट इज नाउ ओपन, एंड इस बार हमने रखा है एक हाइब्रिड मॉडल बिकॉज दैट इज व्हाट वर्क्स आउट द बेस्ट। भाई 12 घंटे का ऑफ ईच लेवल, इट हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इन स्टूडियो का एक्सपीरियंस भी आपको दिया जाएगा। बिगिनर टू एडवांस के अलग अलग लेवल्स हैं, फ्लेक्सिबल एंड इंडिविजुअल फोकस सिलेबस है, 14 साल या उससे ऊपर की उम्र के अगर आप हो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ऑल्सो लाइक वी ऑलवेज से दैट सेलेक्टेड ट्रेन वॉइसेस दे गेट दिस मौका टू होस्ट देयर ओन लाइव शो ऑन रेडियो मस्ती 24/7। सो आपको करना सिर्फ इतना है, अगर आपको करना है या फिर आप चाहते हो कि कोई और से एसोसिएट होना चाहता है, एडमिशंस चाहता है, तो ईमेल करें अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और भेज दें हमें info@radiomasti.com.sg पर। फिर आएगा आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो भर के आपको हमें वापस भेजना है। बस सिंपल करना ही क्या है जो कि लोग अक्सर हमें कहते हैं कि बस सिंपल है, बोलना ही तो है। इतना सिंपल नहीं है ब्रो। गुड इवनिंग।

0: हाँ हाँ तुम ही डीजे तुम ही हो मस्ती वॉइस आपकी चॉइस यू से वी प्ले बड़े बड़े हिट सुनो
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव मस्ती बॉयज आपकी चॉइस आप सुन रहे हैं यानी कि मेरी चॉइस और आपकी चॉइस दोनों के चॉइसेस के गाने यहां पर प्ले हो रहे हैं। वेल हाल तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि जहां पर एक तरफ चल रहा है आईपीएल क्रिकेट वाला वहीं पे फीफा ने अनाउंस किया है कि भाई जुलाई का महीना वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देने वाले हैं बट दे हैव ऑल्सो यस मैं फुटबॉल की बात कर रही हूँ दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस 2026 के वर्ल्ड कप में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 96 years of a World Cup history FIFA में 2026 का final जो है that will feature a full halftime show ये Super Bowl से inspire होके उन्होंने इस बार जो है वो change लाया गया है now कहा जा रहा है कि that ये जो FIFA World Cup 2026 होगा this show will take place at the MetLife Stadium जो कि New Jersey में है on July 19, 2026 जो finals है they will kick off at 3 PM that is ET and then halftime show जो है वो 4 PM ET जो है वो शुरू होगा फीफा जो है उन्होंने कनेक्ट किया कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन के साथ टू क्यूरेट द एंटायर शो एंड क्रिस मार्टिन ने क्या किया उन्होंने उठाए 3 बिगेस्ट नेम्स इन ग्लोबल म्यूजिक टू हेडलाइन together it is going to be just insane so first he picked Madonna okay 7-time grammy winner undisputed queen of pop and of course jo hai major halftime show jo hai inke performance dekhne hi layak hoga dusra jo banda inhone bandi uthai Shakira oh my god ab waka waka you remember yeah so she returns to the tournament's ka biggest stage and will also release the official 2026 world cup ka song which is going to be die die इन सब के होते होते ही खबर आई ही थी कि BTS का नाम भी बिल्कुल यहाँ पर आ गया दे आर ऑलरेडी ऑन देयर वर्ल्ड टूर लेट मी टेल यू दैट सो हमारे कोरियन K-pop ग्रुप के ये जो सुपरस्टार्स जो है दे हैव बिकम द फर्स्ट K-pop ग्रुप एवर टू परफॉर्म एट द वर्ल्ड कप का फाइनल्स आफ्टर मेकिंग हिस्ट्री इन 2020 एज द फर्स्ट K-pop एक्ट टू रिसीव अ ग्रैमी नॉमिनेशन आई मीन सो ये एंटायर हाफ टाइम का ये जो शो है इज बेसिकली रेजिंग मनी फॉर द फीफा का ग्लोबल सिटीजन का एजुकेशन फंड विद अ गोल ऑफ $100 million टू गिव किड्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस टू एजुकेशन एंड सॉकर एज वेल सो इट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक ओके दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप होस्टेड बाय 3 कंट्रीज विच इज US कैनेडा एंड मेक्सिको एंड फर्स्ट विद द 48 टीम्स एंड नाउ फर्स्ट विद अ हाफ टाइम शो इन द फाइनल आई डोंट नो क्या ही नेक्स्ट लेवल अब होने जाने वाला है एनीवेज नेक्स्ट लेवल तो वैसे यहाँ पे गाना भी होने वाला है बिकॉज अमित की रिक्वेस्ट आ चुकी है एंड या लेट्स गो एंड लिसन टू सुखी बाजी आवाज मूवी का नाम ताल ऑन रेडियो मस्ती 24/7

भाई दिस रमता जोगी इज गोना रैप अप दिस आवर बात उसके साथ जब बजेंगे घड़ी में यहां पर साथ भाई आईपीएल अपडेट लेकर आ जाएंगे हमारे जितेश. सो यू टेक द क्विक हाईलाइट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ओवर द वीकेंड आईपीएल की दुनिया में एंड यस आई विल बी राइट बैक उसके बाद. एंड चित्रा आप बिल्कुल वेट करिए बिकॉज आई एम गोना प्ले योर रिक्वेस्ट आफ्टर दैट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. गुड इवनिंग.

0: डीजे तुम ही हो। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस, यू से वी प्ले। बड़े बड़े हिट सुनो।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जी हाँ, आंसर बिल्कुल यहाँ पे पहुंच चुकी है वापस, एंड मस्ती वॉइस आपकी चॉइस आप सुन रहे हो। थोड़ी देर पहले आपको लगा होगा कि ये क्या हो गया, कि जिनके लिए नया है, लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जितेश फॉर दैट आईपीएल हाइलाइट। भाई आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं और बहुत ही एक अलग ही लेवल पे पहुंचा हुआ है अभी, ठीक है। तो हाइलाइट्स तो देने बनते ही है। सो जितेश जो है हर शाम यानी कि मंडे टू फ्राइडे 7 बजे आते हैं और क्विकली आपको एक हाइलाइट देते हैं कि क्या क्या हुआ, जस्ट इन केस इनके डिटेल ब्रेकडाउन पे आपको जाना है एंड यू आर टू मच इनटू इट। ऑफ कोर्स वी हैव गॉट द क्रिकेट कॉर्नर ऑन मस्ती एवीआई, जो कि आज रात को भी 8:30 बजे वहां पे जितेश संतोष और नील हमारे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं वो लोग पूरा का पूरा सारे के सारे जो गेम्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं इन डिटेल और आने वाले गेम के ऊपर प्रेडिक्शन भी किया जाता है। सो वेल यू कैन ऑफ कोर्स उसको भी आप बिल्कुल देख सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। बट फिलहाल लेट अस ज्वाइन हो हमारे अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार जो है अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक मूवी, ठीक है, गोलमाल जो मूवी है उसका 5th जो है पार्ट निकलने वाला है एंड अजय देवगन इज डेफिनेटली इन दैट 5th पार्ट। बट द थिंग इज दैट हाल ही में हमारे शेट्टी साहब ने रोप इन किया हुआ है किसको हमारे अक्षय कुमार को। अब अक्षय कुमार को रोप इन तो कर दिया, बट अक्षय कुमार चार्ज कर रहे हैं अपेरेंटली, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, 40 करोड़। इसीलिए वो जो 100 करोड़ के 20 फिल्में कर चुके हैं लिस्ट, भाई ये बंदा, इसको पता है पैसे कैसे कमाने, मुझे ऐसा बिल्कुल एकदम लग गया है, इट इज जस्ट इनसेन। एंड ऐसा कहा जा रहा है दैट व्हाइल अजय देवगन हैज ऑप्टेड फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, इस मूवी के लिए अक्षय कुमार का अपफ्रंट फी जो है वो ये रह गया है एंड उसी के साथ साथ इट इज मोर देन व्हाट इज अजय देवगन गेटिंग। गुड ऑन हिम भाई, वेरी वेरी गुड ऑन हिम, अक्की बाबा ही रूल किए जा रहे हैं, क्या ही बताए। वेल यहाँ पर फिलहाल आज के दिन में रिक्वेस्ट किए हुए गाने ही ज्यादा रूल करते हैं और चित्रा जो है उन्होंने पिछले घंटे में मुझसे कहा था और घंटा खत्म होने वाला था, तो आई सेड दैट लेट मी कम बैक एंड देन लेट मी प्ले द होल सॉन्ग फॉर यू। सो वेल चित्रा, हियर यू गो, आपका जो रिक्वेस्ट किया हुआ गाना है एंड शी सो स्वीटली सेड नो नो नो नो टेक योर टाइम, आई लव यू for this Tezab movie ka this is the gana you wanted to listen to, let's go saath mein sunte hain radio masti 24/7 live par।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
1: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form. Good morning!
4: बजते ही नाचना जरूरी है। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। यू से वी प्ले।
1: 7:24 बाय द स्टूडियो क्लॉक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस। मैंने चलाई थी चित्रा जी की चॉइस थोड़ी देर पहले, बट उनसे मिस हो गया। ओके, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप एक और बता दो। भाई ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, अपना गाना सुनने का जो है मौका सबको मिलना चाहिए, एंड वो फन और वो जो मोमेंट आप इंजॉय करते हो ना, आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दैट। सो मैंने उनसे वापस से पूछा, फिर मैंने को ऐसा एहसास हुआ कि ये है हमारा झकास अनिल कपूर की बड़ी सी फैन, बिकॉज द नेक्स्ट सॉन्ग ऑल्सो विच ही रिक्वेस्टेड वॉज अनिल कपूर, लेकिन उसमें भी मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया कि अगर अनिल कपूर का ही गाना है जो है चलाना है तो ये वाला क्यों नहीं। सो आई एम श्योर दैट चित्रा यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस गाना एज वेल, व्हिच आई एम गोइंग टू प्ले जस्ट आफ्टर दिस। सो इससे पहले जरा सी गॉसिप कर लें, क्योंकि भाई सोशल मीडिया इज फुल ऑफ गॉसिप राइट नाउ। कान फिल्म फेस्टिवल वी ऑल नो, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि एक होता है रेड कार्पेट के आस पास जो है काफी सारी जो है जगह होती हैं, और वहां पर खड़े होकर सब अपनी अपनी फोटो खिंचाते हैं। एक इन्फ्लुएंसर एंड ब्यूटी क्रिएटर है, इनका नाम है तारिणी। सो शी जो है क्रिएटेड दिस रील। देखो अपनी तरफ अटेंशन लाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हर कोई इस रेस में दौड़ रहा है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू काइंड ऑफ बी देयर। तो कान फिल्म फेस्टिवल में जो है उन्होंने शेयर किया कि उनका सबसे पहला जो है एक्सपीरियंस था यहाँ पर, एंड शी सेड दैट द एक्चुअल रेड कार्पेट मोमेंट वो लास्ट करता है बेरली 1 से 2 मिनट, एंड नॉट एवरीवन गेट्स इक्वल अटेंशन फ्रॉम द फोटोग्राफर्स। तो इनके अकॉर्डिंग सेलिब्रिटीज जो होते हैं जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई, दे रिसीव द होल कार्पेट, वाइल इन्फ्लुएंसर्स एंड जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं दे ऑफ्टन हैव टू अरेंज देयर ओन कवरेज। तो तारिणी ने खुद ही बताया कि शी पेड नियरली अराउंड लाइक 44,500 रुपीज जस्ट फॉर 7 videos and 7 photos उस इवेंट में क्लिक कराने के लिए। उन्होंने और ये भी कहा कि काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्योंकि टाइम्ड एंट्रीज है, सेलिब्रिटी की हायरार्की है, विच प्लेज अ मेजर रोल बिहाइंड द सीन्स इन दिस। एंड या कहा कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, बट मैडम एक चीज जस्ट स्मॉल थिंग, इट्स अ फिल्म फेस्टिवल राइट। तो ऑब्वियसली जो फिल्म स्टार्स है जो अलग अलग जगहों से आए हैं तो उनको पूरा कार्पेट मिलेगा, एंड आई एम जस्ट सेइंग लाइक या मैं मतलब ऐसे सानू की है ना, लास्ट में यही कहना होता है। चित्रा गोना प्ले योर सॉन्ग यहाँ पे. योगेश अचानक से वापस आ गए हैं और कह रहे मेरा गाना का है. अभी वापस चले गए थे ना, तो अभी रुको वेट करो, पहले चित्रा जी का गाना चलेंगे, एजी ओजी करेंगे एंड उसके बाद फिर जो है हम योगेश जी का भी गाना प्ले करेंगे.
0: नहीं सुनी, तुम झूठ बोलती हो, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो.
5: नहीं
0: तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भरती है तुमने?
5: अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर?
0: नहीं चीनी, खा मेरी कसम और कह दे कि ये तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई. कह दे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती.
5: मैं झूठ कैसे बोलूं?

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आज तो ट्विंस वाली गलती हो गई। एक नाव के कितने गाने। ओ माई गॉड। चित्रा जी डोंट वरी, आई हैव फाउंड AGOC फाइनली। बट उससे पहले हमारे योगेश जी जो है वो काफी, इससे पहले कि वो ट्यून आउट ही हो जाए तो उनका भी गाना भी यहाँ पे प्ले कर देते हैं। बट उससे भी पहले 7:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। आई आपको बताया कि ट्रैफिक अपडेट क्या है। व्हीकल ब्रेक डाउन आपको मिलेगा AYE पर टूवर्ड्स टूअर्स आफ्टर पेंजुरू रोड। एक्सीडेंट की खबर है ऑन SLE टूवर्ड्स BKE आफ्टर अपर थॉम्सन रोड। इसका कंजेशन मिलेगा टिल अपर थॉम्सन रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन SLE टूवर्ड CTE बिफोर वुडलैंड्स एवेन्यू 12। सो ये था ट्रैफिक का अपडेट। योगेश जी आपका गाना, साथ ही मूवी का कमिंग अप नेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय हमारी चित्रा जी का जो गाना है AGOG, एंड हमारी कविता जी का भी बिल्कुल मैं लाइन अप करूंगी, लेकिन उस बीच में मैं भी आऊंगी, जरूर आऊंगी। गुड इवनिंग, यह है मस्ती वॉइस, आपकी चॉइस। अगर आपका भी कोई चॉइस का गाना है जरूर मुझे बताएं, मैं प्ले करूंगी। सपना आंटी, मैं भूली नहीं हूं, आपका भी गाना प्ले होगा।

हाँ जी योगेश जी, आई होप यू एंजॉयड योर गाना जी. सपना आंटी आल्सो अलोंग विद यू एंजॉयड द गाना एंड शी इज सेइंग कि भाई बहुत दिनों बाद ये वाला सुना है. आई थिंक मस्ती वॉइस आपकी चॉइस इस शो में होता ही कुछ ऐसा है कि कभी कभी इतने ऐसे गाने बाहर आ जाते हैं और आप कहते हो कि इसको सुने हुए तो अरसा हो गया. बट दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड फीलिंग टू फील राइट. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव एंथ्रॉप के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती वॉइस आपकी चॉइस. लेकिन लेकिन ये जो जिंदगी में हम लोग ये हमें इनके साथ रहना है नहीं रहना है, वो चॉइसेस भी तो कितनी अहम होती है. और ये चॉइसेस आजकल फुल ऑन डिस्प्ले होता है कहां? सोशल मीडिया पर. क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे नहीं किया तो क्या किया. वैसे भी लोग सेलिब्रिटीज की जिंदगियों के अंदर तक घुसने का बिल्कुल वो रखते हैं. और हाल ही में अनाउंस किया मौनी रॉय. यस मौनी रॉय, आप सभी को पता होंगे, नहीं पता होंगे आप गूगल कर सकते हैं, आपने चेहरा तो उनका देखा ही देखा होगा. सो मौनी रॉय उनके फॉर्मर हस्बैंड सूरज नाम बेयर, हाल ही में उन्होंने जो है बिल्कुल सबको सोशल मीडिया पे बताया कि अब हम एक साथ नहीं है, मतलब वी आर सेपरेटिंग म्यूचुअल. अब जैसे ही ये बात बाहर आई सब लोगों ने कहा कि ओ अच्छा, अरे तिल का ताड़ बनने में सोशल मीडिया पर मतलब सेकेंड्स नहीं लगते हैं. पहले तो क्या होता है कि मोहल्ले की आंटियां जो है वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, करते करते थोड़ा टाइम लगता था कोई भी गॉसिप ब्रू होने में. आजकल वो फनी नहीं है यार, गॉसिप ब्रू ऐसे होती है लाइक झट, वो भी इंस्टेंट है ना. सो काफी कुछ हुआ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, उसने एलिमनी मांगी है, ये है वो है. अब मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार इन दोनों ने जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किया है कंफर्मिंग दैट यस दे हैव पार्टेड वेज. हाउएवर जो बाकी चीजें और बिल्कुल अलग अलग चीजें बात हो रही है दैट इज नॉट ट्रू. सो दे हैव टू पुट ऑल द रूमर्स टू रेस्ट एंड दे सेड दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फुल कंसिडरेशन के साथ हम जो है अलग अलग हुए हैं एंड दैट इज द ट्रूथ. एवरीथिंग बींग रिपोर्टेड इज फिक्शन एंड इन सम केसेस अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू जस्ट हमारा नाम खराब करने के लिए. सो वी जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन एंड देर इज नो ट्रूथ टू एनी ऑफ द क्लेम्स बींग मेड ईदर अबाउट अस या फिर थर्ड पार्टी. Dragging other people into this is not cool, especially innocent friends who have nothing to do with this. क्योंकि जैसे ही मौनी रॉय ने वो जो कहा कि अब हम अलग हो गए हैं, उसके बाद for some reason, okay, for some weird reason, मौनी रॉय एंड दिशा पाटनी का जो है पुच्चा वायरल होने लगा एंड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ओ इसीलिए डिवोर्स लिया है. अरे भाई क्या हो गया है तुम लोगों को. क्या हो गया है, आओ इधर आओ. हम अनिल कपूर का गाना सुनाएंगे इस बार, एकदम सही वाला. इनका नाम है लखन. ये भी बहुत दिनों बाद में सुनने वाली हूँ. ऑल थैंक्स टू चित्रा फॉर रिक्वेस्टिंग दिस एंड यस सपना आंटी, उसके बाद आपका गाना.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: हिट्स आपकी प्लेलिस्ट और हमारा थोड़ा सा मिर्च मसाला मस्ती बॉयस आपकी चॉइस यू से वी प्ले।
1: ये तो बेस्ट ही हो जाता है कि अगर आपने गाना रिक्वेस्ट किया हो और आप गाड़ी में बैठे हो और उस टाइम पे आपके रिक्वेस्ट किया हुआ गाना जो है वो प्ले हो जाए, है ना सपना आंटी? यस, आप गुनगुना सकते हो एंड आप बहुत ही प्यार से ख्यालों में भी खो सकते हो। इसी बात के साथ आई होप मैंने सबके प्ले कर दिया। आई नो कविता दी का बाकी है इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पे बाय बाय बोलूंगी क्योंकि कल सुबह वापस से मुझे आना है, बस कुछ घंटे की देरी है एंड आई विल बी राइट बैक सुबह 7 बजे मस्ती का मंत्र लेकर। आई होप मैंने सबकी ख्वाहिशें जो है बिल्कुल पूरी की है यहाँ पर। अगर कुछ रह गई हो तो कोई बात नहीं, हम कल की डेट में प्ले कर देंगे, ठीक है? लेकिन कल ट्यून इन करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आई हैड फन, आई होप यू डिड एज वेल। यू हैव अ गुड गुड नाइट एंड आई विल See you tomorrow morning. Bye-bye and take care. Good night.

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं. और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज. एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. होप यू गाइस लाइक इट. एंड दिस इज व्हाट मेक्स मी लव माय जिंदगी. सो ऑन दैट नोट.

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ एक और गुलदस्ता, एक और साल का बेहतरीन सफर यादों का कारवां के जरिए। तुझे आज यादों का कारवां गुजरेगा 1976 के साल से, 1976 के ईयर से। और आज की शो की हम शुरुआत करेंगे सिंगापुर उस फिल्म से जिसने 1976 के साल में ही नहीं बल्कि सालों तक करोड़ों सिने दर्शकों के दिलों पर राज किया। जी हाँ, शो की शुरुआत कर रहे हैं हम द लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब की मल्टी स्टारर फिल्म कभी कभी से। वही कभी कभी जिसका गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए। वैसे सुपर डुपर हिट फिल्म की स्टार कास्ट बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन दस्तूर है तो बता ही देते हैं। देखिए, इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन साहब, शशि कपूर और ऋषि कपूर के साथ राखी, वहीदा रहमान, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल और नसीम। ये बड़े बड़े रोल्स में थे और इनके अलावा परीक्षित साहनी को भी आप इस फिल्म में देख सकते हैं। अब भाई, किसी फिल्म में इतने सारे मजे हुए कलाकार हो तो मजा लगे आपकी नजर इधर से उधर हो जाए। फिल्म के पर्दे से नजर आप हटा ही नहीं सकते। वैसे ये जो मूवी थी वो कई मायनों में बाकी की फिल्मों से हटकर बनी थी। इससे पहले तक एंग्री यंग मैन की पहचान बना चुके थे अमिताभ बच्चन साहब, लेकिन जब लोगों ने उन्हें कभी कभी में देखा तो वो चौंक गए। बस तभी से बच्चन साहब को रोमांटिक एक्टर के तौर पर भी देखा जाने लगा। वैसे इस फिल्म के कई और किस्से भी ऐसे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। अब आप बताइए कि क्या आप जानते हैं कि फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब के फादर मदर भी ऑन स्क्रीन आए थे। सच बोल रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन साहब और तेजी बच्चन हालांकि एक छोटी सी भूमिका में थे लेकिन दिखाई दिए थे, लेकिन वो इसमें अमिताभ बच्चन साहब के नहीं बल्कि राखी के मम्मी पापा के किरदार में है। अगर आपने गौर नहीं किया हो तो इस बार जब फिल्म देखें तो जरूर गौर कीजिएगा। और सिंगापुर के अलावा एक और खास बात थी, कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी और ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस की पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया था कश्मीर में छुट्टियां बिताने के लिए, शूटिंग देखने के लिए, जैसे अमिताभ बच्चन साहब के माता पिता को। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया आपको, यही वो कभी कभी फिल्म थी जिसके बाद से कभी कभी नहीं बल्कि रोज रोज मिलना जुलना शुरू हो गया था नीतू सिंह और ऋषि कपूर साहब का। मतलब उनका अफेयर यहीं से शुरू हुआ था जो आगे चलकर शादी के बंधन में बंध गया। वेल, फिल्म तो थी ही सुपरहिट लेकिन इसके गाने भी कम हिट नहीं थे। और इसमें एक खास रोल था साहिर लुधियानवी साहब की कलम से निकले गीतों का। म्यूजिक डायरेक्टर खयाम ने कमाल की धुनें रची जादू करती हुई। और टाइटल ट्रैक कभी कभी तो आज भी कहीं सुनाई दे जाता है तो कदम रुक जाते हैं, पूरा गाना सुनकर ही आगे बढ़ने का दिल करता है। और इसके अलावा मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी, ये बहुत ही कमाल का गाना था जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे कुल मिलाकर इस फिल्म में 10 गाने, मुकेश, लता और किशोर कुमार साहब ने ज्यादातर गाने गाए हैं ये, और सभी के सभी अल्टीमेट हैं। जितनी इनकी तारीफ करें उतना कम है। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर जी आपसे भी नाराज आएगा, एक गाना तो आप ना सुना पाएंगे, कम से कम दो गाने सुना दीजिए। शुरुआत कर दीजिए मनमोहक मस्त रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सिंगापुर। आप है समर के साथ, रहेगा मेरे साथ क्योंकि आज ये कारवां गुजर रहा है 1976 के साल से। 22 साल से तो जुड़ी बहुत सारी यादें आपकी भी होंगी, तो ताजा कीजिए ना, आइए हमारे फेसबुक पेज पर, इंतजार कर रहा हूं मैं।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

वेलकम बैक सिंगापुर, मैं हूँ समर। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर हाजिर हूँ यादों का कारवां। और ये यादों का कारवां आज कहाँ से गुजर रहा है? जी 1976 के साल से। गीता जी आप तो पहले उस साल हुई थी, नहीं? गीता जी, आरुषि, आप में से बहुत सारे लोग इस साल पैदा हुए हैं। और पीयूषी, तुम्हारी शायद मम्मी इस साल पैदा हुई थी, इस साल या इससे एक साल पहले, मतलब यहीं कहीं पैदा हुई थी ना। तो चलिए आप भी अपनी यादें हमसे यूं ही ताजा करते रहिएगा। लेकिन फिलहाल तो मैं एक और फिल्म का जिक्र कर देता हूँ जो इसी साल आई थी। फिल्म थी 1976 में ही रिलीज हुई, काली चरण। सुभाष गई साहब की ये डेब्यू फिल्म थी एज डायरेक्टर। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी ये पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। और सिर्फ गई साहब ही नहीं, बल्कि इस काली चरण फिल्म ने तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रीना रॉय को भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की पसंद बना दिया था। वैसे शत्रु साहब को ये फिल्म अकस्मत से मिली थी। दरअसल जब गई साहब काली चरण प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरी को एनएन सिप्पी साहब को सुना रहे थे, उनके पास लेकर गए अपनी कहानी, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना को लीड रोल में रखकर ही फिल्म बनाने की शर्त रख डाली। पर पता गया तो खन्ना साहब ऑलरेडी 2-3 साल के लिए बुक थे। काफी सोच विचार करके सिप्पी साहब और घई साहब इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भैया देखो, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा को एज ए लीड रोल कास्ट कर लेते हैं। और सिन्हा साहब भी इस मौके को शानदार एक्टिंग की बदौलत बनाने में कामयाब रहे। ये फिल्म उनकी पहली सक्सेसफुल फिल्म रही। इंस्पेक्टर प्रभाकर का उनका किरदार बहुत पसंद किया गया। और हाँ, डायलॉग तो और भी लाजवाब थे। शत्रु साहब के एक डायलॉग ने तो लोगों का दिल जीत लिया था। जब तक तू नाम नहीं बताएगा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, कमाल का था ये डायलॉग। और इस फिल्म के बाद तो कई लोग शत्रुघ्न सिन्हा को काली चरण कहकर ही बुलाने लगे थे, क्योंकि इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का डबल रोल था, इंस्पेक्टर प्रभाकर और काली चरण, दोनों का किरदार उन्होंने निभाया था। डायलॉग एक और हिट रहा, वो था विलेन का, अजीत साहब का, सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है, वो कमाल का डायलॉग। ये कुछ डायलॉग्स थे जो बॉलीवुड में कभी नहीं भुलाए जा सकते। वैसे इस फिल्म में विलेंस का भी जबरदस्त बोलबाला था। अजीत के साथ डैनी, प्रेमनाथ, शेट्टी, ये वो कुछ नाम है जो मैं आपको गिना सकता हूँ, जिन्हें आप शायद पहचानते हो। पूरी एक्शन थ्रिलर थी ये फिल्म। खैर बात करते हैं काली चरण के गानों की, हमें तो गाने सुनाने ना आपको, तो सिर्फ 4 ही गाने इस फिल्म में, लेकिन चारों जबरदस्त धमाल मचाने वाले लाजवाब गाने। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और रविंद्र जैन और इंद्रजीत के लिरिक्स इन गानों में 4 चांद लगा रहे हैं। बाकी का काम किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता जी और आशा भोंसले की सुरमई आवाज ने कर दिया। तो इन 4 में से चुनकर सुनाते हैं आपको ये गाने। आप सुनते रहिएगा यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। वेलकम बैक, समर है मेरा नाम। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर फ्लैशबैक में ले जाकर आपकी यादें ताजा करना है मेरा काम, और यादों का कारवां है मेरे शो का नाम। तो यादों का कारवां आज गुजर रहा है सिंगापुर 1976 के साल से। रेडियो मसी 24/7 लाइव की ये महफिल आपको कैसी लग रही है, और आप भी अपनी यादें हमसे ताजा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यादें ताजा कीजिए, बताइए कि 1976 में आप कहां थे, क्या कर रहे थे वगैरह वगैरह। देखते हैं कि आपने ये फिल्म कहां देखी थी, कब देखी थी, देखी भी थी कि नहीं, जिसका जिक्र मैं अब करने वाला हूं। ये फिल्म थी एक्शन जॉनर की फिल्म, नाम था इसका 10 नंबरी। जी हाँ, मनोज कुमार साहब वाली 10 नंबरी। साथ में थी उनके हेमा मालिनी। वैसे हेमा जी के साथ मनोज जी की भी और कई फिल्में आईं, जैसे सन्यासी, क्रांति वगैरह वगैरह, और सभी अच्छी खासी चली भी। पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस फिल्म को, यानी 10 नंबरी को मिला ना, उतना तो शायद ही किसी फिल्म को मिला। हाँ, क्रांति को मिला था, लेकिन उसके लिए पूरा क्रेडिट इन दोनों को नहीं दिया जा सकता, उसमें बहुत सारे कलाकार थे। वेल, तो कहते हैं ना कि एक तो होता है हिट, और उस पे होता है सुपर हिट, और उससे भी ऊपर होता है ब्लॉकबस्टर हिट। तो बस 10 नंबरी इस कैटेगरी में आती है। यू वोंट बिलीव, तब इसने इंडियन रुपीस में 4 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि इस बेहतरीन फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर मदन मोहला कुछ समय पहले ही 82 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 82 साल की उम्र में इस शख्सियत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। खैर, 10 नंबरी जैसी कई खूबसूरत सी मूवीज के जरिए वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कमाल के डायरेक्टर रहे मदन साहब। दोस्तों, आसान नहीं होता बैक टू बैक 4 सिल्वर जुबली फिल्में देना। आसरा, शराफत, राजा जानी और फिर 10 नंबरी, ये उनकी फिल्में थी। बहरहाल, अब जो नहीं जानता वो जरूर पूछेगा कि इस मूवी में ऐसा क्या था जो इसे दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया। दरअसल, इस फिल्म में मनोज कुमार का रोल 10 नंबरी यानी कि आदतन अपराधी का है, जिसे हालात ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। छोटी उम्र में छोटी मोटी चोरियां करता हुआ जब ये किरदार बड़ा होता है तो इलाके का खतरनाक डॉन बन जाता है। इस बीच अर्जुन यानी कि मनोज कुमार साहब को इश्क मोहब्बत हो जाता है रोज मैरी से, जिसके किरदार में है हेमा मालिनी जी। तो कुल मिलाकर शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म पूरा पैसा वसूल है। नहीं देखी तो अब भी देख सकते हैं आप, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। फिलहाल तो इसके गानों की बात कर लेते हैं। लिरिसिस्ट हैं इस फिल्म के मजरू सुल्तानपुरी साहब, और उनके लिखे बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई जोड़ी ने। कुल मिलाकर 6 गाने इस फिल्म में, लेकिन अभी आपको टाइटल ट्रैक सुनवा देते हैं जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। ये दुनिया 1 नंबरी, तुम्हें 10 नंबरी, आइए सुनते हैं।

सपोर्ट जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने, तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: लीजिए एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेरा नाम है समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं आज 1976 के साल से इस कारवा को गुजार रहा हूँ जिसका नाम है यादों का कारवा। तो सिंगापुर 70s के दौर में अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्टर्स की धाक रही। जिस भी मूवी को उठा लीजिए, जो भी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा हिट रही, उनमें इन्हीं गिने चुने एक्टर्स के नाम और उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी। पर एक एक्टर ऐसा भी था जो इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा था। गैस कर सकते हैं वो कौन सा एक्टर था? चलिए मैं बता देता हूँ, वो नौजवान एक्टर थे ऋषि कपूर साहब। यहाँ ठीक 1970 में ऋषि कपूर ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर बड़े पर्दे पर एंट्री की थी और राज साहब के बचपन का रोल, राजू का रोल उन्होंने किया था मेरा नाम जोकर में। बेहतरीन अदाकारी का सिलसिला जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बॉबी, फिर रफू चक्कर और फिर कभी कभी के बाद धमाकेदार फिल्मों की फेहरिस्त में अगली फिल्म आई लैला मजनू, बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म, दो प्रेमियों की सच्ची कहानी पर। ऐसा कहते हैं कि सऊदी अरब में ऐसे दो प्रेमी हुए थे, लैला और मजनू। लैला एक्चुअली, लैला का नाम तो लैला था लेकिन मजनू का नाम मजनू नहीं था, मजनू का नाम था खैस, खैस होता उनका नाम, लेकिन क्योंकि वो लैला के इतने बड़े दीवाने हो जाते हैं तो वो मजनू कहलाए। मजनू बेसिकली अरेबिक में कहते हैं दीवाने को, पागल को। तो लैला के दीवाने थे मजनू साहब। तो लैला मजनू जो एक कहानी पर्दे पर दिखाई गई तो ये लोगों को बहुत पसंद आई और इसमें ऋषि कपूर तो बने थे मजनू, लेकिन क्या आप जानते हैं लैला कौन थी? जी, एनी गेसेस? अगर आप कह रहे हैं रंजीता कौर तो आप बिल्कुल सही हैं। रंजीता की ये डेब्यू फिल्म थी, लिहाजा इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो चुके ऋषिदा के सामने वो कहीं से भी कम नजर नहीं आई। ऋषिदा मैं बोल रहा हूँ ऋषि कपूर साहब को, हाँ अक्सर हम ऋषिदा बोलते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी साहब को। अब भाई ऋषिदा बड़े हो गए तो, और हम उनकी सेहत की बहुत कामना करते हैं क्योंकि वो अभी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हैं, अमेरिका गए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस आएँ। तो यहाँ मैं ऋषिदा उन्हें कह रहा हूँ। ऋषिदा के साथ रंजीता कौर थी और दोनों ने कमाल की एक्टिंग की। बाकी के कैरेक्टर्स जैसे डैनी डेंजोंगपा, अरुणा ईरानी, असरानी और रजा मुराद साहब भी कमाल के थे, लाजवाब थे। वैसे इस फिल्म के बनने के बाद न जाने कितनी ही लैंग्वेजेस में इसी कॉन्सेप्ट, लैला मजनू के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी फिल्में बनी और दौर अभी भी बन रही है। इसका एक रीमेक तो मुझे भी याद है, हरमेश मल्होत्रा साहब ने बनाया था लैला मजनू के नाम से ही, और ये इसमें लैला थी श्रीदेवी और मजनू बने थे अनिल कपूर साहब। तो ये फिल्म तो उतनी नहीं चली थी जितनी ये लैला मजनू चली थी, 1976 वाली लैला मजनू। इसके गाने बड़े कमाल के थे, एक से बढ़कर एक गाने थे और इसमें क्योंकि कमाल का काम किया था ऋषि कपूर साहब ने तो इसलिए भी ये फिल्म बहुत ज्यादा याद की जाती है। वो गाना, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। आहा क्या बात थी, लता जी की आवाज का जादू आज तक कानों में मिठास खोले हुए है। सिर्फ यही नहीं, बाकी के गाने भी जैसे इस रेशमी पाजेब की झनकार, रस्ते रस्ते और तेरे दर पर आया हूँ कुछ लेकर जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, कमाल की कवाली थी। ये सभी कमाल के गाने लिखे साहिर लुधियानवी साहब ने और म्यूजिक कंपोज किया था मदन मोहन साहब ने। तो चलिए फिलहाल तो मैं अपने कंप्यूटर जी से दरख्वास्त करूंगा कि एक गाने से तो होगा नहीं है, दो गाने तो सुनवाइए कम से कम। और आप लोग सुनते रहिए यादों का कारवां, अपनी यादें ताजा करते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं हूँ समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर इन नगमों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: मात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो और आज हम अपने कारवां के जरिए 1976 की सैर कर रहे हैं। यादों का कारवां है हमारे शो का नाम। मैंने एक फिल्म का जिक्र किया, लैला मजनू उसका नाम था। उसके बाद कई फिल्में लैला मजनू के कॉन्सेप्ट पर बनी। ऐसी एक फिल्म आई थी नागिन इसी साल, हालांकि एक नागिन पहले भी आ चुकी थी, वैजयंती माला उसमें हीरोइन थी, लेकिन ये नागिन तो कमाल की नागिन थी। बेहतरीन अदाकारा रीना रॉय की ये कमाल की फिल्म थी, जिसे एक मायने में जो इस समय नागिन का कॉन्सेप्ट चल रहा है उस कॉन्सेप्ट की पहली फिल्म कहा जा सकता है। भाई अभी तक नागिन के नाम से जो भी फिल्म या सीरियल्स बन रहे हैं उनमें लीड रोल यानी कि नागिन का एक ही मकसद रहता है, प्रेमी नाग की हत्या का बदला लेना। सही कह रहा हूं ना मैं? तो जनाब बात हो रही है रीना रॉय वाली नागिन की। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस है रीना रॉय, वही इसमें नेगेटिव किरदार में, जो अमूमन बॉलीवुड की फिल्मों में देखा नहीं जाता है। पूरी मूवी में सिर्फ बदला बदला और बदला लेना ही दिखाया गया है। प्रेमी नाग का किरदार निभाया जितेंद्र साहब ने, जिनका ज्यादा रोल नहीं है, मारे जाते हैं वो, इसीलिए तुम नागिन बदला लेती है। वहीं सुनील दत्त साहब का रोल दमदार है। नागिन जहां बदला लेते हुए एक के बाद एक 6 दोस्तों को मार डालती है, वहीं आखिर में 7वां दोस्त यानी कि सुनील दत्त साहब नागिन को ही मार डालते हैं और ऐसे फिल्म खत्म हो जाती है, दी एंड हो जाता है। वैसे रीना रॉय की जगह नागिन के रोल के लिए डायरेक्टर ने पहले सायरा बानो को अप्रोच किया, फिर मुमताज को किया, फिर रेखा को, तीनों ने ही मना कर दिया। बोली ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है भैया, ये शेड हम नहीं करेंगे। लिहाजा लॉटरी लग गई महज 19 साल की रीना रॉय की, और नागिन करने के बाद रातों रात वो पॉपुलर हो गई। तो देखिए जनाब यही तो लेसन है इस कहानी का कि जब मौका मिले उसे भुना लो, नहीं तो भैया देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, हो जाती है देर, फिर पछताए क्या हो जब नागिन हो जाए हिट, भले ही वो हो नेगेटिव कैरेक्टर में फिट, बस वो होनी चाहिए नेगेटिव कैरेक्टर में भी फिट। तो यही हुआ, फिल्म हिट हो गई। तो चलिए फिलहाल इस फिल्म के गानों की भी बात कर लेते हैं। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं जिन्हें मोहम्मद रफी साहब, महेंद्र कपूर और लता दीदी की लाजवाब आवाजें मिली हैं। तो भैया आप देर किस बात की, वर्मा मलिक के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के खूबसूरत म्यूजिक से सजे ये गाने आपको सुनवा देते हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर। नागिन आपने देखी है क्या? कब देखी थी? 1976 में आई थी फिल्म। क्या आपने उसी साल देखी थी? बताइए बताइए, इन यादों को ताजा कीजिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव के फेसबुक पेज पर आकर। स्टे कनेक्टेड।
1: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
2: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेवकूफी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
1: ये दीवानगी नहीं हकीकत है, मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
3: विजय पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
4: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
5: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
6: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
1: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
7: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलोसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
1: अरे भाई ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
1: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
2: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर ना देख सके।
3: That's such.
0: हाँ चलो। चलिए
4: हालत कुछ अपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उफ़ो, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं, और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, चाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
5: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं समर के साथ और आज समर आपको लिए चला है 1976 के बेहतरीन साल से। ये वो दौर था सिंगापुर जब बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स हमें अलविदा कह चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदत्त साहब की, मैं बात कर रहा हूँ बिमल रॉय की, मैं बात कर रहा हूँ आसिफ साहब की, मैं बात कर रहा हूँ महबूब खान साहब की। इनकी जो बेहतरीन फिल्में और जिस तरह की ये फिल्म बनाया करते थे, जैसी कहानियाँ दिखाया करते थे, वो अब नहीं थी। ये नया दौर था और इसमें मसाला फिल्में ज़्यादा चल रही थी और जब मसाला फिल्मों की बात आती है तो दो तीन डायरेक्टर्स का नाम उस वक्त बहुत चर्चा में था। एक मनमोहन देसाई, दूसरे मोहन कुमार और तीसरे प्रकाश मेहरा। तो ये जो अगली फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ वो प्रकाश मेहरा साहब ने डायरेक्ट की है, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से निकली है फिल्म। फिल्म का नाम था हेरा फेरी। हालांकि बाद में जो हेरा फेरी आई उसके सीक्वल भी बने, लेकिन ये हेरा फेरी 1976 में हो गई थी। प्रकाश मेहरा की एक और गुड डोज ऑफ कॉमेडी रोमांस एंड ड्रामा थी ये, और इसमें अजय और विजय थे, नहीं बॉबी और सनी देओल नहीं, अजय और विजय इस फिल्म के दो कैरेक्टर्स थे जो अमिताभ बच्चन साहब ने और विनोद खन्ना ने निभाए थे। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि विजय कौन थे। विजय ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन थे और अजय विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने कुल मिलाकर साथ साथ 6 फिल्में की, उनमें से एक सक्सेसफुल फिल्म ये भी थी और दोनों ही उस वक्त टॉप पोजिशन के लिए एक तरह से कंटेंडर थे। मैं 1976 की बात कर रहा हूँ। उस दौर को अगर आज के दौर से कंपेयर करें तो आप ये मान लीजिए कि सलमान खान और शाहरुख खान की कोई फिल्म है, दोनों चाहते हैं कि वो नंबर वन बने और उनके जो दर्शक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो भी इन दोनों की फिल्मों के दीवाने थे। तो इसीलिए फिल्में हिट होना लाजमी था और हुई भी। हेरा फेरी का मतलब होता है फाउल प्ले, मतलब सही मायने में अगर मैं कहूं तो धोखाधड़ी देना, इधर की चीज उधर करना। तो ये कुछ कमाल की फिल्म थी, इसीलिए इसमें कॉमेडी बहुत थी और बड़ी अच्छी कॉमेडी की दोनों ही एक्टर्स ने। 1976 की हेरा फेरी में, जिसे डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के अलावा उनकी हीरोइन थी सायरा बानो, जो अमिताभ बच्चन साहब की हीरोइन थी। और विनोद खन्ना की हीरोइन कौन थी मालूम है आपको? सुलक्षणा पंडित। जतिन ललित को जानते हैं आप? जतिन पंडित, ललित पंडित, ये उन्हीं की बहनें हैं, विजेता पंडित और सुलक्षणा पंडित। तो उनकी जो बड़ी बहन थी सुलक्षणा पंडित, वो इस फिल्म में हीरोइन थी। श्रीराम लागू थे इसमें और उनके अलावा असरानी भी थे, जिनका बड़ा कमाल का काम था। फिल्म का म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गाने लिखे थे अंजान साहब ने, अंजान समीर अंजान के पिताजी। और इस पूरी टीम के कमाल के एफर्ट्स का अंजाम ये हुआ कि फिल्म सुपरहिट हो गई। तो मुझे तो इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बहुत पसंद है। कंप्यूटर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये गाना प्ले कर दें तो मजा आ जाए। वक्त की हीरा फेरी है, किशोर कुमार और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव। हीरा फेरी देखी आपने? ये वाली कहाँ देखी, कैसे देखी, कब देखी, कौन साथ में था, कौन सी यादें हैं जो इस हेरा फेरी से जुड़ी हुई हैं, हमें जरूर बता सकते हैं आप रेडियो मसी 24/7 लाइव के हमारे फेसबुक पेज पर आकर। मैं इंतजार करूंगा। मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर बस इन नगमों के बाद। स्टे कनेक्टेड।

0: बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो। मैं हूं आपके साथ समर लेजेंड्स वाला आजकल यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं। और आज का जो हमारा यादों का कारवां है वो गुजर रहा है सिंगापुर 1976 के साल से। बड़ा कमाल का ये साल था, बड़ी मजेदार फिल्में आई और उनके मजेदार और बेहतरीन नगमे लेकर मैं यहाँ हाजिर हूँ। कुछ कहानियां इन फिल्मों की आपको सुना रहा हूँ, कुछ कहानियां जो शायद आपने ना सुनी हो और कुछ जो आप भी जानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, जब यूं मिल बैठेंगे तो बहुत सारी यादें भी ताजा हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप, अपनी यादें ताजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर? हाँ, वेरी गुड। लिखते रहिए और बताते रहिए हमें कि 1976 में आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन कौन सी फिल्में आपने देखी। अगली फिल्म का जिक्र करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामायण बनाने वाले रामानंद सागर साहब ने। जी, ये फिल्म थी चरस, एक जबरदस्त हिट फिल्म थी उस साल की। फिल्म की स्टार कास्ट में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी उनकी हीरोइन, अजीत विलेन, अरुणा ईरानी धर्मेंद्र की सिस्टर बनी है, अमजद खान असरानी, सुजीत कुमार ये है, केशव मुखर्जी और टॉम ऑल्टर इस फिल्म के मुख्य पात्र थे। और इस फिल्म से पहले रामानंद सागर धर्मेंद्र साहब को लेकर आंखें मना चुके थे 1968 में, एक बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट। तो ये फिल्म भी इसी तरह की बड़ी फिल्म थी जिसकी शूटिंग इंडिया के बाहर हुई थी, रोम में और माल्टा में। इसके अलावा फिल्म की शुरुआत ही युगांडा से होती है, बेसिकली वो युगांडा इंडिया में पिक्चराइज किया गया था। युगांडा में सिविल वॉर हो रहा है, बहुत ही अनरेस्ट है वहां पर, और वहां रहते हैं धर्मेंद्र और उनकी फैमिली। अचानक उनकी फैमिली को अटैक किया जाता है, उनके घर को आग लगा दी जाती है। धर्मेंद्र उस आग में से अपनी बहन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो निकल कर आते हैं तो वो उनकी बहन नहीं होती है, वो होती है उस घर की नौकरानी। वो सारा किस्सा सुनाती है कि दीदी ने मुझे कहा कि मांग लो, तुम क्या मांगना चाहती हो मुझसे? तो मैंने कहा जो आपने कपड़े पहने मुझे ये दे दीजिए। तो मैंने उनसे ये कपड़े मांग लिए और दीदी ने मुझे ये दे दी और मैंने पहन लिए। अपनी बेटी के चले जाने के गम को धर्मेंद्र के पिताजी सह नहीं पाते और दम तोड़ देते हैं। धर्मेंद्र को अपनी बहन की बॉडी नहीं मिलती और यहां से उनके दिमाग में एक संदेह पैदा होता है। लेकिन क्योंकि युगांडा में सिविल वॉर छिड़ गया है इसलिए वो इंडिया चले आते हैं। इंडिया में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहां कर उन्हें पता लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे अजीत साहब, कालीचरण नाम है उनका इस फिल्म में, वो बड़ी घालमेल कर रहे हैं साहब। वो बहुत सारी प्रॉपर्टी को तो बेच चुके हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी से इल्लीगल धंधे शुरू कर दिए हैं उन्होंने। अब सूरज साहब को मरवाने की कोशिश करते हैं वो। सूरज कौन? अरे अपने धर्मपाजी का नाम सूरज है इस फिल्म में। तो ऐसे ये फिल्म चलती है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। वहां से बचते हुए वो हेमा मालिनी जी की कार में छुप जाते हैं। हेमा मालिनी को भी कालीचरण यानी अजीत साहब ने सताया हुआ है, परेशान किया हुआ है, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। एक मर्डर का चार्ज उन पर लगाया हुआ है और ये धमकी दे रखी है कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हें सजा करवा देंगे, इस मर्डर के केस में फंसवा देंगे। तो कुल मिलाकर वो भी स्मगलिंग करना शुरू कर देती हैं कालीचरण के लिए। लेकिन धर्मबाजी को एक पुलिस ऑफिसर मिल जाते हैं और वो उनके साथ कालीचरण की गैंग का बैंड बजा देते हैं। यही है पूरी फिल्म। फिल्म को लिखा है वेदराई साहब और रामानंद सागर साहब ने। फिल्म का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गाने लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। और लिखे ही नहीं है, एक गाना गाया भी है कि आ जा तेरी याद आई ओ बालम हर जाई। ये गाना जब शुरू होता है तो वो आनंद बख्शी साहब की आवाज में शुरू होता है। कमाल के लिरिक राइटर तो थे ही वो, साथ में उन्होंने कमाल के कई गाने भी गाए, एक ही नहीं कई गाने गाए। अच्छा, इसके अलावा इस फिल्म का एक और गाना मुझे बड़ा पसंद है, कल की हंसी मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। फिल्म में वैसे तो कुल 6 गाने हैं लेकिन ये 2 गाने मुझे बहुत पसंद है। तो कंप्यूटर जी, आपको क्या पसंद है? आपको भी वही पसंद है ना जो मुझे पसंद है? तो सुनवाइए सिंगापुर को भी पसंद आएंगे गाने। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर सिंगापुर बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है समर, लौटूंगा एक और फिल्म का जिक्र लेकर यहीं पर। स्टे कनेक्टेड।
1: नाइट।
2: गुड नाइट।
1: गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

सिंगापुर जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से मैं समर कर रहा हूं आपका स्वागत। 1976 के साल की चर्चा चल रही है आज यादों का कारवां में। तो 1976 में आप कहां थे? पैदा नहीं हुए थे लेकिन मम्मी से पूछेगा, पापा से जानिएगा कि वो कहां थे, क्या उन्होंने ये अगली फिल्म देखी थी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं यादों का कारवां में। ये फिल्म है फकीरा। एनएनसीपी साहब ने अपनी एक टीम बनाई और एक फिल्म प्रोड्यूस की चोर मचाए शोर 1974 में, और ये फिल्म हिट हो गई। तो इसी टीम को उन्होंने दोहराया 1976 की फकीरा में। फकीरा मॉडर्न डे रॉबिनहुड टाइप की कहानी है, जिसमें इसमें भी एक्चुअली अजय और विजय दो कैरेक्टर हैं, लेकिन यहाँ विजय जो है वो फकीरा है यानी शशि कपूर, और अजय जो है वो उनके भाई है जो डैनी डेंजोंगपा बने इस फिल्म में। बचपन में दोनों बिछड़ जाते हैं, उन दिनों की कहानी में ये एक रिवाज था। तो फिल्म की शुरुआत में वो बिछड़ जाएंगे और एंड में आकर मिल जाएंगे, यही कहानी हुआ करती थी। अच्छा, ये जो अजय विजय हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। दोनों ही क्रिमिनल हैं, लेकिन फकीरा अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, आज के रॉबिनहुड हैं वो, और इसीलिए उन्हें फकीरा कहकर लोग बुलाते हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया था सीपी दीक्षित साहब ने, और फकीरा की हीरोइन के बारे में तो बता दूं मैं आपको, फकीरा की हीरोइन है शबाना आजमी, जो एक पुलिस वाली बनी है, और वो चुपके से एक अंडरकवर के तौर पर फकीरा की गैंग में शामिल हो जाती है। फकीरा की गैंग में कौन है? फकीरा की गैंग में है असरानी पोपट और अरुणाई रानी, जो मन ही मन शशि कपूर साहब को चाहने लगती हैं, लेकिन शशि कपूर साहब को हो जाता है प्यार इस अंडरकवर एजेंट शबाना आजमी से। तो कुल मिलाकर ये वाली कहानी भी एक नजर आती है वहां पर। और फिर फिल्म में विलेन तो है ही अपने मदन पुरी साहब। ऑल एंड ऑल ये हिट फिल्म थी और इसका म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने, गाने इसके बड़े कमाल के थे। फकीरा चल चला चल, सुन के तेरी पुकार, महेंद्र कपूर साहब ने इसे गाया था, और एक वर्जन इसका हेमलता जी ने भी गाया था। हेमलता रविंद्र जैन साहब की फेवरेट सिंगर्स में से हुआ करती थी। और इसका एक गाना, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, ये गाना बड़ा हिट हुआ था, लता जी की आवाज में था ये गाना। और एक गाना और था, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई, लता जी के साथ किशोर दा की थी आवाज। और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक से एक बड़ी रोचक बात जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि इसके जो दोनों गाने थे मेल और फीमेल वर्जन में, वो दोनों ही फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में नॉमिनेट हुए थे, हालांकि जीते दोनों ही नहीं। फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसको लेकर तेलुगु में इसका एक रीमेक बनाया गया जिसका नाम था डोंगलाकू डोंगा। इसमें कृष्णा हीरो थे और जया प्रदा उनकी हीरोइन थी। फकीरा की कहानी बड़ी मजेदार है। फकीरा फिल्म अपने आप में बड़ी अच्छी लगती है देखते हैं तो, और इसके गाने तो हैं ही मजेदार। तो एक काम करते हैं, फकीरा के इन गानों को सुनते हैं अगली फिल्म के जिक्र तक। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मिलूंगा आपसे इन गानों के बाद यहीं पर। स्टे कनेक्टेड।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी,
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
1: वाजी, क्या बात जी?
2: Order today from GG Mart, your personal grocer.

वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवा के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। आज हम यादों का कारवा में सिंगापुर गुजर रहे हैं 1976 के साल से, 1976 से। 70s के दौर में एक फिल्म बनना शुरू होती है, नाम उसका रखा जाता है पापी देवता, इसी नाम से वो लॉन्च होती है। लेकिन धीरे धीरे उसका नाम भी बदल जाता है और उसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी बदल जाते हैं, जैसे सोचे गए थे वो नहीं रहते। दुलाल गुहा साहब ने इस फिल्म को बनाया था, उन्होंने हीरो के तौर पर अमिताभ बच्चन साहब को लिया और ये उन दोनों की, यानी दुलाल गुहा साहब और अमिताभ बच्चन साहब की एक साथ पहली और आखिरी फिल्म है। लेकिन हीरोइन के तौर पर वो पहले पहुंचते हैं मुमताज के पास, लेकिन मुमताज ये कहकर कि अब वो रिटायरमेंट ले रही हैं, ये फिल्म रिजेक्ट कर देती हैं। फिर ये प्रपोजल वो लेकर पहुंचते हैं शर्मिला टैगोर के पास। शर्मिला टैगोर कहानी पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये तो एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर है, ये मैं नहीं कर सकती। वो भी ठुकरा देती हैं इस रोल को। और फिर ये रोल पहुंच जाता है रेखा जी के पास। फिल्म का नाम भी अब बदल दिया जाता है। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो फिल्म का नाम होता है दो अनजाने। जी, यही वो फिल्म थी दो अनजाने जिसका अब मैं जिक्र कर रहा हूं, और यही वो दो अनजाने थी जहां से ये दो अनजाने अमिताभ बच्चन साहब और रेखा धीरे धीरे करीब आने लगे थे, और इतने करीब आने लगे थे कि फिर कहते हैं कि यहां से उनका अफेयर शुरू हुआ था। आई डोंट नो कितना सच है, लेकिन र्यूमर्स की माने तो यही सच है। ये फिल्म और गंगा की सौगंध में तो फिर वो एकदम बहुत जग जाहिर हो गया था कि एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो कुल मिलाकर ये दो अनजाने एक जबरदस्त जोड़ी में बदल रहे थे, ये इतिहास बनाने जा रहे थे, ये इन्हें भी नहीं पता था। इस फिल्म में नेगेटिव शेड में है प्रेम चोपड़ा, और प्रेम चोपड़ा से पहले ये रोल ऑफर किया गया था कबीर बेदी को। कबीर बेदी साहब ने भी मना कर दिया, और प्रेम चोपड़ा साहब की तो क्या कहूं, लॉटरी लग गई, उन्हें ये रोल ही नहीं मिला, बल्कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बंगाली डायरेक्टर थे इस फिल्म के, तो लाजमी था कि उनके ज्यादातर कलाकार बंगाली ही हो, और कहानी भी कुछ बंगाली बैकग्राउंड पर ही है। तो अमिताभ बच्चन रेखा के साथ इस फिल्म में उत्पल दत्त हैं, प्रदीप कुमार हैं, और उनके साथ अनूप कुमार, निपोन गोस्वामी और अभी भट्टाचार्य भी आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म में एक बड़ी ही कमाल की एंट्री थी। जी, शायद बहुत कम लोग ये जानते हो कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने अग्निपथ और गिरफ्तार से पहले इस फिल्म में काम किया था। एक छोटा सा रोल है उनका, और ये रोल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो जिस रूम में रहा करते थे अपने स्ट्रगलिंग डेज में, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी रहा करते थे, और प्रोड्यूसर के बहुत हाथ पैर जोड़ने पर उन्होंने एक छोटा सा रोल, घंटी का रोल, मिथुन चक्रवर्ती साहब को दे दिया था। और मिथुन चक्रवर्ती साहब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अमिताभ बच्चन और रेखा जी के साथ वो पैदल होटल से सेट तक आते थे और सेट से होटल तक जाते थे। उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो समय स्ट्रगल ही कर रहे थे, बाद में वो खुद भी एक बड़े स्टार बन गए, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह से ये एक मेमोरेबल फिल्म बन गई मिथुन चक्रवर्ती साहब के लिए भी। तो चलिए काम करते हैं, मैं इस फिल्म का एक मेमोरेबल सा गाना आपको सुना देता हूं जो शायद आपको याद हो, किशोर कुमार साहब की आवाज में, और एक बार ये गाना किशोर कुमार और शिवांगी कोल्हापुरी की आवाज में, लुक छिप जाओ ना, याद आया। तो आइए आप भी रेडियो 24/7 लाइव पर एंजॉय कीजिए इन गानों को, इन यादों को बेसिकली, और इन यादों के साथ हो सकता है कि शायद आपकी डैडी या आपकी मम्मी आपके लिए गाना गाती हो, उन्हें भी ताजा कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज पर आकर। और सुनते रहिए यादों का कारवां। जाते जाते एक फिल्म का और जिक्र करके जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लौट कर आएगा। अभी मैं यही हूँ रेडियो 24/7 लाइव पर, स्टे कनेक्टेड।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी, लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

स्वागत स्वागत स्वागत एक बार फिर से आपका। मैं हूँ समर रेडियो 24/7 लाइव पर। यादों का कारवां में आज हम बात कर रहे हैं 1976 की सुपरहिट फिल्मों की, और ऑफ कोर्स उनके सुपरहिट गाने तो आपको सुनवाई रहे। इसी फेरिस्त में जाने से पहले एक और फिल्म का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत करीब है मेरे दिल के, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये फिल्म, फिल्म भी और इसका म्यूजिक भी। ये फिल्म एक बंगाली कहानी पर बेस्ड है जिसे लिखा था सुबोध घोष साहब ने, और इसे डायरेक्ट किया बासु चटर्जी ने और प्रोड्यूस किया राजश्री प्रोडक्शंस के ताराचंद बड़जात्या ने। फिल्म का नाम है चित चोर। जी हाँ, कमाल की थी फिल्म। अगर आपको याद आ गई हो तो अमोल पालेकर इसमें हीरो थे, जरीना वहाब और विजेंद्र घाट के दूसरे हीरो थे, जरीना वहाब उनकी हीरोइन थी। मतलब कहीं एक कंफ्यूजन है, इसी कहानी पर बेस्ड कई फिल्में आपने देखी होंगी। एक तो सूरज बड़जात्या नहीं बनाई थी, बाद में 2003 में आई थिंक मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और अगर मैं परदेश की बात करूँ तो परदेश भी कहीं ना कहीं इसी कहानी पर बेस्ड लगती है। अच्छा, इस फिल्म का एक और हीरो था, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, दीपू। दीपू बोले तो दीपक कुमार अग्निहोत्री उर्फ दीपू, जिसे मास्टर राजू ने निभाया था। कमाल का ये रोल था, और इस रोल के लिए मास्टर राजू को नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट चाइल्ड एक्टर। तो भैया उन्हें तो कैसे बुलाया जा सकता है। और जहां तक इस फिल्म के गानों की बात है, एक से बढ़कर एक गाने थे, और म्यूजिक का पूरा डिपार्टमेंट रविंद्र जैन साहब ने संभाला था, क्योंकि गाने लिखे भी उन्होंने थे और कंपोज भी उन्होंने किए थे। कमाल के ये गाने थे। गानों की बात करूं उससे पहले मैं अमोल पालेकर साहब के बारे में बता देता हूं आपको कि अमोल पालेकर साहब की ये सिल्वर जुबली हैट्रिक फिल्म थी। तीनों फिल्में उन्होंने शुरू की जो थी वो बासु चटर्जी के साथ की थी। पहली रजनीगंधा 1974 में, फिर 1975 में आई उनकी छोटी सी बात, और फिर 1976 में ये चितचोर। तीनों फिल्में सिल्वर जुबली हिट थी और एक डेब्यूटेंट एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। तीनों फिल्मों में अमोल पालेकर हीरो थे। अच्छा चलिए, अब म्यूजिक की बात कर लेते हैं। म्यूजिक में जैसा मैंने आपको बताया कि ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से रविंद्र जैन साहब ने संभाला हुआ था, तो उन्होंने अपने फेवरेट सिंगर केजे यशुदास से गाने गवाए। तमाम गाने केजे यशुदास ने गाए हैं, चार गाने हैं, और उनके साथ दो गानों में हेमलता जी की आवाज है। हेमलता जी रविंद्र जैन की फेवरेट सिंगर। और एक और कमाल की बात, केजे यशुदास साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला इस फिल्म के लिए, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा के लिए। और इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड की अगर हम बात करें तो हेमलता जी को एक गाना जो उन्होंने डुएट गाया था यशुदास जी के साथ, तू जो मेरे सुर में सुर मिला दे, उसके लिए मिला 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड। बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा नॉमिनेशन इस फिल्म को दो तीन कैटेगरी में और मिले थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर भी, लेकिन फिल्म फेयर में तो खाली बाजी हेमलता जी ने ही मारी। अब जाने का वक्त है तो मैं इन गानों का जिक्र कर देता हूं जो इस फिल्म की जान है, और हर म्यूजिक लवर के कलेक्शन में ये होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही जुगाड़ कर लीजिए, कहीं से भी लेकर आइए। पहला गाना, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, केजे यशुदास की आवाज में। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, आहा क्या गाना है, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा और तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, ये तमाम चारों गाने इस फिल्म की जान थे। फिल्म का डायरेक्शन इतना कसा हुआ था, फिल्म की कहानी इतनी बढ़िया थी कि फिल्म छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है। पूरी फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि हम उस गांव में ही बस गए। वैसे आपको बता दूं कि जरीना वहाब का जो गांव जो दिखाया गया है, उनका जो घर है वो पंचगनी में है, महाराष्ट्र में, और पंचगनी और महाबलेश्वर के हिल्स की ही सारी फिल्म में ज्यादातर शूटिंग है। 25 दिन में ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी। कमाल की फिल्म है, मौका मिले जरूर देखिएगा। फिलहाल मेरा जाने का वक्त है, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, और जाते जाते इन बेहतरीन नगमों को एंजॉय कर लीजिए। कंप्यूटर जी कंफ्यूज हो गए, कौन सा सुनाएंगे कौन सा नहीं सुनाएंगे हैं? मैं तो कहता हूँ सारे सुना दीजिए, मुझे मालूम आप सुना नहीं सकते क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। तो चलिए इन गानों को एंजॉय कीजिएगा, अभी दीजिए इजाजत, जाते जाते बस वही बातें वही वादे जो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कर दें। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोगों की यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो चलिए फिलहाल मुझे भी अपनी यादों में याद रखिएगा। मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर। मिलूंगा आपसे यहीं पर एक और नए शो में, एक और नए साल की बात करने के लिए यादों का कारवां के जरिए। तो फिर मिलेंगे, चलते चलते नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: तीन, चार, पांच, छह,
2: सात, आठ, नौ,
1: दस, ग्यारह,

कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग, कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास, कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

उसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गई। रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
2: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
3: जी, मेरा असली नाम जॉनी।
2: और नकली?
3: नकली भी जॉनी।
2: इसके अलावा भी कोई नाम है?
3: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, मैं एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

मौला के हाथ, जिसकी चुंदरी रंग दी धन धनुष के भाग।

महबूब के घर रंग है आज रंग है ए माँ रंग है।

अनग बधावरा मोरे घर है आज रंग हे माँ।

निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, निजामुद्दीन आलिया, जग उजियारो, जगत उजियारो, जग उजियारो, हाँ जग उजियारो, साईं जग उजियारो, जगत उजियारो, जहाँ देखूं मोरे संग।

दान धन भाग उनके मोरे सजनी, धन धन भाग दान धन भाग उनके मोरे सजनी, जिन ऐसो सुंदर प्रीतम पायो खेलो चिश्तियों हो।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live Fan. हाँ जी हाँ जी, अर्ली बर्ड्स तो सही है, लेकिन डज एक्चुअली अर्ली बर्ड्स जो होते हैं उनको वर्म्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऑन ट्रैप के साथ, यहाँ पर 7 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट। अ वेरी वेरी हैप्पी ट्यूजडे टू ईच वन ऑफ यू। मस्ती का मंत्र यहाँ पर शुरू हो चुका है एंड माई थॉट इज सुपर सुपर सिंपल टूडे बट वेरी पावरफुल, गुड वाइब्स एंड एनर्जी। यू नो समटाइम्स, अरे वाह वाह क्या बात है, ये देखिए भाई आज तो योगेश जी तड़के तड़के जो है बिल्कुल यहाँ पर आ पहुंचे हैं। नॉट बैड नॉट बैड, वेरी नाइस। यू नो समटाइम्स मॉर्निंग्स आर जस्ट नॉट अबाउट कॉफी एंड नॉट अबाउट द वेदर, नॉट इवन हाउ मच आपको उतनी नींद मिली जितनी आपको मिलनी चाहिए थी एंड ऑल दोस थिंग्स। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज यू नो one positive message from someone, and exactly wahi mere saath bhi hua. Before even the show started, you know, Sapnanti Amari, she messaged me saying, Antara, what a beautiful Tuesday morning it is. And I was like, instantly I smiled and thought, yes, of course, it is. Now it is definitely. See, कुछ ऐसा वैसा मैजिक तो नहीं हुआ, बट वही सेम ट्यूसडे है, वही काम तो करना ही है, वही सेम अलार्म, वही सेम रनिंग अराउंड इन द लाइफ, बट एक पॉजिटिव लाइन एंड पूरा मूड शिफ्ट। एंड ऑनेस्टली आई रियली फील दैट एनर्जी विच ट्रेवल्ड रियली रियली बिल्कुल फास्टर। योगेश कह रहा है इट इज ऑल अबाउट चाय, विच आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि वो जो फर्स्ट सिप जाती है ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओ हो हो, अंतरा आत्मा जो है वो ऐसी जाग उठती है कि मैं क्या ही बताऊं। बट वेल यही है, कभी कभी वी थिंक कि भाई अरे तो मैंने तो बस गुड मॉर्निंग ही बोला है, बट मे बी दैट गुड मॉर्निंग वॉज एग्जैक्टली दैट समवन नीडेड टुडे, मे बी दैट यू नो लिटिल कॉन्वर्सेशन विच वॉज रिक्वायर्ड टू किक स्टार्ट द day in a perfect manner. So masti ka mantra aaj ka bahut simple hai, be the person who brings good energy into the room. वाह वाह वाह। सो वेल इसी बात के साथ शुरू करते हैं, अच्छे अच्छे थोड़े गाने वाने प्ले करते हैं और वापस आते हैं खबरों के सिलसिले को चालू करने के लिए ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
0: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
3: जैसा कि गुड मॉर्निंग काफी अच्छा सा हुआ है, यहाँ पे योगेश जो है उन्होंने काफी एनर्जेटिक वाइब जो है यहाँ पे भेजी हुई है, अलॉन्ग विद बैडमिंटन का कोट। सुबह सुबह सबके जो दिन की शुरुआत काफी अच्छी हुई है, बट लास्ट नाइट इट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। इफ यू आर one of those people who is following IPL from the very, very start, very truly emotional

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: 7:32 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। आइए आपको बताया जाए कि सुबह सुबह इस वक्त सिंगापुर में सड़कों का हाल चाल क्या कहता है। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा टीपीई पर टुवर्ड्स एसएलई एट एसएलईबीकेई एग्जिट। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन टीपीई टुवर्ड्स अगर आप जा रहे हैं पीआईई बिटवीन लोयांग एवेन्यू एंड केपीई ईसीपी, और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई आफ्टर टेम्पनिस एवेन्यू 7, अवॉइड करें लेन नंबर 3। वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कहीं Next is a beautiful song on a beautiful Tuesday wali morning. Ye hai Masti Ka Mantra with me, Antara. Good morning.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Masti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore. DJ.

0: Your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: वेलकम बैक। 7:40 हो चुके हैं, 40 मिनट रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ है यहाँ पर और चल रहा है मस्ती का मंत्रा। दिस इज नॉट हैपनिंग हर जगह पर। भाई अनुराग कश्यप का नाम आपने सुना होगा लेकिन आजकल उतना ज्यादा नहीं सुना होगा। सर ने मूवीज तो बनानी यहाँ पर बंद कर दी है बट ही हैज डेफिनेटली गिवन अस अ लॉट ऑफ रियली रियली गुड मूवीज। तो फिल्म मेकर अनुराग कश्यप जो है हाल ही में लैंड किए एक बड़ी सी लीगल ट्रबल में, क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज कर दिया गया है एक नॉन अवेलेबल वॉरंट। जी हाँ, दैट इज राइट। अब हुआ कुछ ऐसा कि भाई आजकल तो सब कुछ जो है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी अपनी भड़ास निकालते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो सबूत के तौर पे मान लिया जाता है। सो वेल भाई अनुराग कश्यप जो है किसी एक मूवी का रिव्यू देते जो है किसी एक कॉमेंट बॉक्स में जाकर उन्होंने कुछ जो है काफी ही ऐसी बात लिख दी, एंटी ब्राह्मण बात लिखी बट काफी ऐसे शब्दों के साथ लिखी जो उनको नहीं यूजुअली लिखनी चाहिए थी। सो वेल उसके बाद जो है वो पूरा पोस्ट वायरल हो गया। बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिटीज हैं, ब्राह्मण कम्युनिटीज एंड एवरीबडी, दे स्टूड अप अगेंस्ट हिम कि भाई इनको तो जेल में डालो, इनको ऐसा बोलने किसने दिया। सो वेल अभी जो है इस रिमार्क के लिए अगर रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव दैट ही हैज ऑलरेडी फेल्ड टू अपियर, काफी सारे इनके पास समन्स पहुंचे हैं, काफी बार इनको कोर्ट बुलाया गया है बट ये हाजिर नहीं हुए हैं, विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द चांस ऑफ हिज अरेस्ट इन दिस कॉन्ट्रोवर्शियल केस। भाई जो है जब इंसान का दिमाग गर्म होता है ना तो वो सही सोच ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाट आई हैव कम टू अ कंक्लूजन इन माय लाइफ आल्सो कि आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना काफी काम डाउन होना पड़ता है, गुस्से में कोई काम नहीं होता है ब्रो। एंड अनुराग कश्यप की तो हिस्ट्री भी रही है कुछ ऐसी कि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो देखते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली अनुराग कश्यप, आप विशाल ददानी को देख लीजिए कितनी बार हुआ है कि वो उन्होंने वीडियो बना बना के पोस्ट किए हुए हैं जबकि बाद में आके उन्हीं वीडियोज के लिए उन्होंने सॉरी भी बोला हुआ है। या तो यू हैव टू स्टैंड अप टू व्हाट यू आर सेइंग अदरवाइज डोंट, लाइक आई मीन फिर सानू की राइट, दिस इज ये वाले पॉइंट कहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर बस ऐसी ही बातें, ऐसी ही अपडेट्स बिल्कुल बनी रहेंगी। ब्यूटीफुल ट्यूसडे मॉर्निंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
3: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
4: आपके फाजल दोस्त यहाँ पर वापस आ चुके हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। जी हाँ, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ। फाजल दोस्त इसलिए बोला क्योंकि एक और कोर्ट केस, एक लीगल बैटल जो कि चल रहा है काफी टाइम्स, एंड आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग दिस इज गोना गो, बट देन यस, संजय कपूर और उनके 30,000 करोड़ का जो मामला है वो सिर्फ आगे ही बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां पर उनकी माँ रानी कपूर जो है वो कह रही है कि भाई प्रिया सचदेव कपूर ने सब कुछ अपने उसमें ले लिया है, फैमिली का ट्रस्ट जो है वो मेरे बेटे ने मेरे नाम पे किया था, एंड यू नो दैट हैज टू कम टू मी। लास्ट अपडेट कुछ ऐसा था कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी, बट वहां पर कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस बात को आगे लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो जहां पे जज का है, वो पूरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एंड द जज इज ऑल्सो सेइंग दैट हम खाली हाथ आए थे, हमें खाली हाथ जाना है, ऑल वी ब्रिंग टू दिस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज आवर सोल, एंड दैट इज व्हाट वी टेक बैक। इतना सब कुछ करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, एंड आप अपने जो है क्लाइंट को जाकर ये जरूर बताएं दैट इस उम्र में ये सारी चीजें करके क्या मिलेगा, किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड इट वाज क्वाइट अ मोमेंट व्हेन द जज एक्चुअली सेड द होल थिंग दैट वी कम विद एम्प्टी हैंड्स एंड गो विद एम्प्टी हैंड्स, एंड या कहा जा रहा है, बार बार उनको इंसिस्ट किया जा रहा है रानी कपूर जी को कि एक यू नो मीडिएट कर ले भाई, बीच में एक बीच वाला रास्ता चुन ले और दोनों यू नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले और सब खुशी खुशी रहे, बट दोनों तरफ से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। प्रिया सचदेव कपूर इज सेइंग नथिंग अबाउट इट, जब उनको हाजिरी देनी होती है वो अपना काम कर रही हैं, बट रानी कपूर इज इंसिस्टिंग, उनकी मम्मी जो है संजय कपूर की, या मैं पीछे नहीं हटने वाली। बट इनके मतलब काफी सारे सवाल भी उसके बाद ये आ रहे हैं कि आफ्टर रानी कपूर हु इज गोइंग टू टेक ओवर, अगर तो ये केस जीत जाती है, जस्ट इन केस, बात वहां पर सोचने की है। गाना प्ले करते हैं ऑन रेडियो बस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।